प्रभात एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 16, तदनुसार 7 जुलाई ईस्वी सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातःकाल के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a three-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. Describing the welcome as deeply touching, PM Modi said he looked forward to holding discussions with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by the Samanvay group comprising Indonesian students. After receiving a warm welcome from members of the Indian diaspora at his hotel, the Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Vyang Quilt Shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the Triple Gem. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravarti, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are just 160 kilometers away. The southernmost tip of India in the Nicobar Islands is just 160 kilometers from Aceh. And after the very successful visit of President Prabowo as chief guest for our Republic Day, I think the relations are on an upward swing in a higher trajectory, and Prime Minister's visit will reinforce that trend. And we will, of course, doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation, and we are also hopeful for opening up new areas of cooperation.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Narendra Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Devgiri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his 4-nation visit to the Gulf. In football, Spain stormed into quarterfinals of FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. And that is the end of this news bulletin.

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 6:11 हो रहे हैं और प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथी।
1: एपिसोड नंबर 129 129।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे कविता कृष्णमूर्ति और साथ ही ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं नमस्कार। भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, ये रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। और अब आइए सुनते हैं अगली रचना ओम व्यास और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब अगली रचना ये सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

एक बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो कन्हैया

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजन। श्रोताओं, सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। सवेरे 8 सुनिएगा समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से सुनिएगा प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण सवेरे 8:30 पर। श्रोता, हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर। उसके बाद सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10। उसके बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण दिन के 10:30 से। श्रोताओं, यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 4 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम 4:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार। शाम 5:02 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में सुनिएगा एक ही संगीतकार द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर सुनेगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की चर्चा का विषय होगा दलहन एवं तिलहनी फसलों की खेती। मनोरंजन कीजिएगा हो लोकगीत से चुई देवगम और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप सुन सकेंगे और मनोरंजन कीजिएगा कुरमारी लोकगीत से मालवती महतो और साथियों के स्वरों में। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, शाम 6 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम 6:02 पर सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम। शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। फरमाइशी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा होगा शाम 8। उसके बाद आकाशवाणी दिल्ली से सुनेगा समाचार संध्या का प्रसारण शाम 8:45 पर, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9। रात्रि 9:15 पर सुनेगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10 सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल हमारे आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, आज के इस सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहर चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है बहू बेगम। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और धुन तैयार की है रोशन ने।

0: फिल्म बहू बेगम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार खयाम।
1: जितना हुस्न पे हुजूर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अभी सुनते हैं अगला गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, SD बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है प्यासा।

श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत SD बर्मन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आराधना।

और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध किया गया गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेम साहिब।

और अब श्रोताओं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदीवर का लिखा गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं मुकेश और कंचन की, फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत। येसुदास की आवाज़ में, फिल्म का नाम है नैया। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
1: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
2: वरना मंगलोर आ को गांव बरगड़ा आरकी थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बंदा है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
3: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
4: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना ने यापा में रे तपा में रे वा बेटा निका
5: अन्या नितुम बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मिनिम बुरुड़ी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तने बुरुड़न गया तब जाय तेरे काका गुंगो को उन बको को काको मेल में
6: अलिंग मुनि सुरन पे ते आपिले तने लिंग से आ जा हुरा रे मिनै रो जिता हुरा रे मिनै रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरन का अले आया न तुम ते नम आपिले तने।
0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है सिंदूर।

और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिल लुधियानवी का लिखा और ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध किया गया गीत। फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

और अब श्रोताओं इस गीत के बाद आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। श्रोताओं, अब ये बात करते हैं उनकी जिनके बदौलत देश सुरक्षित है। श्रोता, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश सुरक्षित है और हम सब देशवासी आज़ादी से जी रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म उपकार का गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
6: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
5: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
6: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would, of course, be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course, educational and health sectors.
5: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
4: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
7: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
8: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
7: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम किया.
4: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Devgiri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
9: The committee has called upon residents throughout POK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against the severe crackdown by Islamabad and the sweeping arrest of more than 600 civil rights activists in Pakistan-occupied Kashmir, with reports of shelling, firing and clashes emerging from several parts of Muzaffarabad. Thousands of people took to the streets on demanding an end to the blockade, restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of a 38-point written agreement. The demonstrations have intensified since Pakistan banned the JAAC under the Anti-Terrorism Act. Protest organizers allege that more than 600 workers and political leaders have been arrested, while authorities have imposed an economic blockade by restricting the supply of food, flour and essential medicines. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
4: External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to July 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the king and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Dr. Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Heavy rains continue in the coastal part and the Ghat areas of Maharashtra, with a red alert being sounded for Palghar, Raigad and Ghat areas of Nasik and Pune for today. Coastal districts, including Mumbai and North Maharashtra districts, have been given orange alert with the possibility of moderate to heavy rains in certain areas. Authorities have taken precautions to ensure the safety of citizens, with NDRF and SDRF teams on high alert in sensitive areas. A report.
10: The Ghat areas of Maharashtra have seen intense rainfall, with Lonavala recording more than 600 mm of rain. Many tourist places have been closed. In Nashik district, authorities have sounded maximum alert

0: following forecast of cloudburst like rainfall. Following the alert, schools and colleges in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar, Raigarh, Ratnagiri district and sensitive ghats of Nashik, Satara, Pune will remain closed today. Mumbai-Pune expressway has been partially opened for traffic after being disrupted following a landslide. With reports of Sangeeta Godbole, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Indian wrestlers finished with an impressive haul of 20 medals, including 4 gold, 7 silver and 9 bronze at the Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya, Thailand. India ensured consistent podium finishes across multiple weight divisions throughout the championship, securing top 3 overall team rankings in both women's wrestling and men's freestyle. In women's wrestling, India finished second on the podium with 184 points, falling just short of champions China with points, while outclassing third place Japan with 142 points. The Indian men's freestyle team finished third overall in the team standing with 152 points, behind winners Kazakhstan with 170 points and runners-up Iran with 164 points. Leading the Indian charge in the women's division were Parveen in 50kg, Muskan in 53kg and Kajal in 76kg, who all clinched gold medals in their respective weight classes. In the men's freestyle, Sumit Kumar, Lakshman Bharaskar captured the solitary gold medal for India in the 70kg category, prevailing 13-7 in a high-scoring thriller against Kazakhstan's Sunkar Sedakmet. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of second half stoppage time to secure the victory. Meanwhile, Portugal superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of 16 exit. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. Belgium defeated the United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals. Two early goals from Charles de Ketelaere and a third from Hans Wanneken gave Belgium a strong lead. Romelu Lukaku added the final goal in the last seconds. On the other hand, Malik Tillman scored the lone goal for the US in the first half. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the 5-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanging playing 11 for the third T20 international. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 international on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
2: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust Chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency charge-sheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए। पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के DGP और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण SC/ST अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पात्र उम्मीदवार इस योजना के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि भारी बारिश के बावजूद सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है।
3: जो माहौल दर्शा रहा है, ये हाल की भूमि जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में आकर इस उर्वरक का रखाना को स्थापित किया था, वो यही दर्शाता है कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। बारिश इतनी थी, मैं खुद कॉन्फ्यूजन में था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आना पहुँचना ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
0: शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उनसे शराब कारोबार में भूमिका और कारोबारियों से संबंधों पर सवाल किए। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान से धमकी मिलने के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद SSP प्रभात कुमार से मुलाकात की। विधायक को अब 4 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। चटर्जी ने अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की। उन्होंने बोकारो में सांसद ढुलू महतो के बयानों को अमर्यादित भी बताया।
4: देखिए, नेटवर्क जब तक नहीं टूटेगा तब तक सिर्फ सुरक्षा गार्डों को बढ़ा देना ही सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ऐसे तमाम क्रिमिनल्स, इनको एक भय पुलिस का होना चाहिए, तो इनकी नेटवर्क टूटनी चाहिए। जो इनको संरक्षण दे रहा है उन पर ग्रिप होना, तभी जाके हम समझते हैं जो ऐसे लोग जो है क्राइम से पास आएंगे।
0: रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने SIR को लेकर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 29 जुलाई तक घर घर जाकर 100% काम पूरा करने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने पर सिल्ली विधानसभा के 2 BLO पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष और नलीन कुमार को सदस्य मनोनीत किया गया है।
5: उड़ीसा में आज आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के डीजीपी और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अंतर राज्य सुरक्षा, सीमा विवाद और उग्रवाद नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण

0: मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला की ऐतिहासिक रथ यात्रा के संरक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्थायी रथ आसन भवन के निर्माण की घोषणा की है। कल रथ निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर बताया। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी में सर्वाधिक 79.8 मिलीमीटर और रांची में 37 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले स्थानों पर नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर शहर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
2: पची की जो हालत है, एक बारिश में पूरा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। जब रोशनी खलखो जी दिल्ली जाकर वार्ता की तो उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि राज्य सरकार से नगर विकास विभाग से जो योजना बना के 2500 करोड़ का मांगा गया था, 600 करोड़ का ही योजना भेजा गया।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है जिस पर भाजपा का ही कब्जा है।
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का यही फितरत कि जब वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जवाबदेही से भागेंगे तो उसका ठिकरा विपक्ष के सरकार के ऊपर, और यही परिस्थितियां रांची में भी है, झारखंड में। नगर निगम को किसी भी प्रकार का फंड का किल्लत नहीं, लेकिन चूंकि अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से भागना है तो आप कार्य योजना बना करके दो।
0: रांची में अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का रोमांच जारी है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए लगभग 438 नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में इस स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ा कदम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बदलाव की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत व मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण अंतरिम महासचिव। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीएम हेमंत सोरेन ने की पर्यटन खेलकूद युवा कार्य विभाग की समीक्षा, खिलाड़ियों का डाटाबेस बनाकर दी जाएगी सहायता। प्रभात खबर के शब्द हैं, रांची के एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी में था, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने प्रिंस खान के गुर्गे को पैर में मारी गोली। दैनिक जागरण लिखता है, नवजात की मौत के बाद रिम्स की तीसरी मंजिल से कूदी मां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए, पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धन

बाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو۔
1: شوتاؤں ابھی آپ سن رہے تھے

आकाशवाणी रांची से प्रसारण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:44 हो रहे हैं और प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं कैलाश चंद्र महतो और साथियों के स्वरों में कुरमाली लोकगीतों का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कुर्माली लोक गीतों का कलाकार थे कैलाश चंद्र महतो और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आइए चर्चा करते हैं भारतीय सेना के सिपाही कैप्टन, जी हाँ, भारतीय सेना के कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में आइए बात करते हैं, जिनकी आज शहादत दिवस है। श्रोताओं, पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। माता कमल कांता की श्री रामचरित मानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। श्रोताओं, विक्रम और विशाल पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनका दाखिला कराया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का जज्बा भी था। श्रोताओं, कुछ समय बाद विक्रम बत्रा चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और सीडीएस की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम बत्रा जी को इस दौरान हांगकांग में भारी वेतन में मर्चेंट नेवी की भी नौकरी मिल रही थी, लेकिन देश सेवा का सपना लिए विक्रम बत्रा जी ने इस नौकरी को ठुकरा दिया। श्रोताओं, विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम बत्रा जी का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्फ व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय उन्हें कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पार, जो है चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। श्रोताओं, विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान उनके कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर भी संज्ञा दी गई। श्रोताओं, अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया। इसकी भी बागडोर विक्रम बत्रा जी को सौंपी गई।
उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। श्रोताओं, मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन बत्रा अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए उन्हें जो पीछे ले जा रहे थे, घसीट रहे थे, तब उनको उनकी छाती में गोली लगी और वे जय माता दी कहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। श्रोताओं, अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया, जो जो है उनके पिता जीएल बत्रा ने प्राप्त किया। श्रोताओं, विक्रम बत्रा ने 18 वर्ष की आयु में ही अपने नेत्र दान करने का निर्णय ले लिया था। श्रोताओं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में। श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जी का। आइए उनके जीवन से जुड़ी बातें जानते हैं। श्रोताओं, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में 7 जुलाई 1981 में हुआ। उनके पिता का नाम पान सिंह व माता का नाम देवकी देवी है। उनका पैतृक गांव उत्तराखंड में है, लेकिन बाद में उनके पिता रांची बस गए थे। श्रोताओं, अपने शुरुआती दिनों में वे लंबे लंबे बाल रखते थे। धोनी को तेज रफ्तार बाइक और कारों का शौक है। आज भी जब कभी उन्हें वक्त मिलता है तो वह अपनी पसंदीदा बाइक पर रांची के चक्कर लगाते हैं। श्रोताओं, 10वीं कक्षा से ही क्रिकेट खेलने वाले धोनी बिहार अंडर 19 की टीम से भी खेल चुके हैं। 1998-99 के दौरान कूच बिहार ट्रॉफी से उनके क्रिकेट को पहली बार पहचान मिली। श्रोताओं, जिम्बाब्वे के दौरे पर उनकी कामयाबी को देखते हुए तत्कालीन क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली ने उन्हें टीम में लेने की सलाह दी। साल 2004 में धोनी को पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। हालांकि वे अपने पहले मैच में कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके और 0 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद उनको कई अहम मुकाबलों में मौका दिया गया, लेकिन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 123 गेंदों पर 148 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे कि सभी धोनी के मुरीद बन गए। श्रोताओं, साल 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम एक दिवसीय विश्व कप में पराजित हुई थी। ऐसे में T20 की बागडोर यानी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में दे दी गई।

उन्होंने T20 विश्व कप में ऐसा जलवा बिखेरा कि देखने वाले देखते ही रह गए। फाइनल मैच में धोनी की सूझबूझ से ने भारत को T20 का चैंपियन बना दिया। श्रोताओं, साल 2011 में उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भी अपनी सूझबूझ भरी पारी से भारत को विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई और भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान बने जिसने भारत को दो बार अपनी कप्तानी में विजेता बनाया। श्रोताओं, साल 2010 में धोनी ने साक्षी धोनी से विवाह कर लिया, आपके जगह साक्षी सिंह से उनका विवाह हुआ। श्रोताओं, धोनी के खेल की जितनी प्रशंसा हुई वो उनके कद को दर्शाती है और उनकी कप्तानी में उनकी जो है, श्रोताओं, भारतीय टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। श्रोताओं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 7 जुलाई है और श्रोताओं, आज ही के दिन भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसकी शुरुआत की गई थी 7 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। ये परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। इसका नियंत्रण DVC करती है। श्रोताओं, दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोनार, बोकारो और बराकर प्रमुख हैं। ये नदियां गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से होकर बहती हैं। श्रोताओं, इस परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण, पर्यावरण संरक्षण व वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण और औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। श्रोताओं, दामोदर घाटी परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहीं मैथन में सर्वप्रथम भूमिगत विद्युत गृह बनाया गया है। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज बनाया गया। ये क्रमशः बराकर नदी पर मैथन बांध, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, मैथन एयर बर्मो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दुर्गापुर के निकट एक बड़ा बैराज बनाया गया। श्रोता, हम बात कर रहे थे भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। और अब कार्यक्रम आगे बढ़ने से पहले ये सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है मशहूर जो है हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी की। हिंदी जय श्रोताओं, दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। बंटवारे के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वे पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे। श्रोताओं, बताया जाता है यहीं देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार जी को अभिनेता बना दिया। देविका रानी जी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार

0: रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार जी ने देश के नंबर एक अभिनेता के रूप में जो है वो स्थापित हो गए। श्रोताओं, दिलीप कुमार जी ने फिल्म ज्वार भाटा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही, उनकी पहली हिट फिल्म जुनून थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार जी को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार जी ने पहली बार राज कपूर जी के साथ काम किया। ये फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगले आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। सन 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थीं क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। श्रोताओं, दिलीप कुमार अपने आप में सेल्फ मेड मैन की जिंदगी जो है जीती जागती मिसाल है। उनकी निजी जिंदगी हमेशा कौतूहल का विषय रही, जिसमें रोजमर्रा के सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलना बिछोड़ना, इकरार तकरार सभी शामिल थे। ईश्वर भीरू दिलीप कुमार को साहित्य, संगीत और दर्शन की अभिरुचि ने गंभीर और प्रभावशाली हस्ती बना दिया। शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमति, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के सलोने नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले दो दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। सभ्य सुसंत कुलीन इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन यानी कि ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। असफल प्रेमी के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति पाई, लेकिन यह भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं है। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी। उनकी गिनती अति संवेदनशील कलाकारों में की जाती है, लेकिन दिल और दिमाग के सामंजस्य के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व और जीवन को ढाला। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के अव्वल अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। वे आज़ादी का उदय काल था। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप राज देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। ये नए चेहरे आम सिने दर्शकों को मोहक लगने लगे। श्रोताओं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभिनय में सबसे ज़्यादा नकल दिलीप कुमार जी के अभिनय की ही हुई है। शायद ये कम लोगों को ही पता है कि दिलीप कुमार अच्छे पटकथा लेखक भी हैं। अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने फिल्म लीडर में किया था। हालांकि लीडर कामयाब फिल्म नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी ऐसी थी जिसमें भविष्य के संकेत छिपे थे। उसमें श्रोताओं, दिलीप कुमार जी ने फिल्मालय स्टूडियो में एक पेड़ के नीचे बैठकर लीडर की पटकथा लिखी थी। पूरी कहानी जो है वोट और राजनीति, उद्योगपति राजनीतिज्ञों के संबंध की थी। श्रोताओं, दिलीप कुमार जी के साथ काम करना हर कलाकार का एक सपना होता है। ये सपना कम कलाकारों का ही पूरा हो पाया है, क्योंकि दिलीप कुमार ने बेहद कम फिल्मों की। साथ ही कुछ कलाकार उनके सामने आने से इसलिए बचते रहे क्योंकि वे दिलीप साहब के सामने कमजोर नहीं लगना चाहते थे। श्रोताओं, भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार जी का निधन आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 2021 को हुआ। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। श्रोताओं, तो हम अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे हिंदी फिल्म सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार जी के बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ा धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ा तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गांव बारह तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जा है
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरुपा ऐसे ना करना ऐसे दुख रहे ना अन्य यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
7: अन्य तुम लोग मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हें लड़ाई चलाओ तमे दूर रंग गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: और अब श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म का नाम है चमेली।

श्रोताओं, ये था फिल्म चमेली का गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म ताल का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। और भाई सुनते हैं फिल्म सर का गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब वी मेट।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए।

0: किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से, पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
0: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
0: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
0: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
0: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
0: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिली। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो आओ।

0: कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: नादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ, बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।
1: चलो।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है।

0: और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहाँ आती।
1: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
1: अरे वो देखो, वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी

0: एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण।
6: नमस्कार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 10:30 और 5 सेकंड।

0: हाँ बहुत बढ़िया।
1: और बाहर तो मौसम ने बहुत ही अच्छी करवट ली है,
0: बहुत
1: ना?
0: अच्छी करवट ली है। दो दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं।
1: अभी पता है मैं बुरी तरह ट्रैफिक में फंसा हुआ था,
0: हाँ
1: है ना?
0: अभी शहर में यही हालात बने हुए हैं।
1: हाँ, क्यों है पता है? क्योंकि शहर के, क्या बताऊं, बारिश है और जितनी जल ऊपर से भगवान जी दे रहे हैं उतना निकासी के लिए शायद प्रबंधन उतनी अच्छी नहीं है। तो जहां पर डाउन एरिया है वहां पर थोड़ा वाटर लॉगिंग हो गया है
0: हाँ
1: और रेड सिग्नल भी नहीं काम कर रहा है। तो
0: हाँ
1: लाजिब सी बात है कि अभी ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ है तो ट्रैफिक पर थोड़ा सा लोड है
0: बिल्कुल
1: इसलिए।
0: बिल्कुल
1: लेकिन शुक्र करो कि मैं टाइम से स्टूडियो
0: बिल्कुल।
1: घुस
0: हाँ
1: गया, है ना?
0: हाँ बिल्कुल, ये अच्छी
1: चलो
0: बात है।
1: और कुछ बताओ, सुविचार से शुरुआत करते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम
0: कार्यक्रम
1: के।
0: की शुरुआत हमेशा की तरह
1: हाँ
0: में एक अच्छे
1: हाँ
0: से विचार के साथ करते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: तो जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई चाहे किसी भी रूप में हो, वो इंसान के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती है। कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता और व्यक्ति के भीतर विचारशीलता, समझदारी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा करता है। पढ़ाई का असर सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक पाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। क्या
1: क्या
0: कहते हैं?
1: विचार, बहुत ही सही
0: यानी हम कह
1: मीनाक्षी,
0: सकते हैं कि
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान का कोई अंत नहीं, हर सीखा हुआ पाठ एक दिन काम आ ही जाता है।
1: अरे क्या बात, शिक्षा वो संपत्ति है, कहते हैं ना, जिसे कोई चुरा नहीं सकता
0: बिल्कुल।
1: है ना? और जितनी भी चीजें इस धरा पर उपलब्ध हैं तुम्हारे पास, वो भौतिक हो चाहे कुछ भी हो, वो शायद एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर तुम्हारे अंदर जो शिक्षा है, संस्कार
0: संस्कार
1: है,
0: है वो कभी खत्म
1: वो
0: नहीं
1: कभी
0: होते।
1: कोई तुमसे छीन भी नहीं सकता है।
0: नहीं
1: और कहते हैं जितना तुम बांटते हो इस शिक्षा रूपी शास्त्र को, उतना ही वो बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: अब श्रोताओं के लिए एक हम गीत भी सुनवा दें।
1: है, एकदम।

0: बहुत ही मधुर नगमे, और ऐसे नगमे हमें कहीं ले जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस नगमे से कुछ याद आ रहा है। ये बाहर जो भीनी भीनी फुहार और ये बारिश हो रही है, तो
1: यानी आपका इशारा है मौसम की तरफ कि मौसम ने तो करवट बदला ही है, और ऐसा करवट बदला है कि सब हाल है, बेहाल है सबका।
0: बेहाल तो चलो अच्छा है, हाले बेहाल से दिल का हाल जाना जा सकता है, पर हम ये कहते हैं कि मौसम भी बहुत जरूरी, हर मौसम का अपना मिजाज होता है, और बरसात भी बहुत जरूरी है। चूंकि हम जो हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र है, ग्रामीण परिवेश का राष्ट्र है, और हम कृषि पर अभी भी बहुत निर्भर करते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मौसम ने उनका साथ दिया है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों से अपील है, वो अपना खेत अविलंब तुरंत शुरू करें जोतना और बिचड़े प्रबंधन की तैयारी करें, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी,
1: तो फिर किसान आपका तैयारी में लग भी गए होंगे।
0: हाँ, बहुत जगह तो मैं जाते रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह पर लोग बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, जो अगाध खेती करते हैं वो बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, और उनके खेतों में पानी भी वो जमा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और जो जलाशय की स्थिति थोड़ी बहुत सुनने में आ रहा था ना कि हटिया डैम या कांके डैम में थोड़ा जलस्तर में गिरावट आई थी, वो चलो अब पूर्ण हो गई, सुधार हो ही नहीं गया, ये जलस्तर में पूर्ण था, अभी तीन दिनों की बारिश में बहुत ही अच्छी मात्रा में जल आ गया है, है ना,
1: जरूरी था ये, बिल्कुल जरूरी।
0: लेकिन थोड़ी बहुत पता है, एक वो भी न्यूज सब हम देखते हैं और आसपास ये भी देखते हैं, कहीं कहीं वाटर लॉगिंग होता है, तो फिर आम जनजीवन को थोड़ा बहुत तो परेशानी होती है ना। जैसे हमारे रांची में बहुत सारा जो लोअर एरिया है, करमटोली का नीचे एरिया, हिंदपीढ़ी का नीचे एरिया, पत्थल लोअर कंपाउंड, जहां पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, और पता ही मैं तो कहूंगा ये आम जनमानस के कारण, हम कहते हैं ना, हम सब कुछ सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि सरकार के कारण ऐसा हो रहा है, पर कभी हम अपने आप में सोचते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, हम ये जो कंक्रीट जंगल बना देते हैं, क्या हमने सोचा कि अपने ही घर में अपना हम जल प्रबंधन करें, है ना। सरकार कहती है कि अपना वाटर मैनेजमेंट करें, क्यों कहती है कि अपने घर का जो जल है वो अपने घर के बाहर ना बहाएं, अपने घर में वाटर रिजर्वायर बनाकर उसको जल संचयन करें, तो इससे क्या होगा कि आपके क्षेत्र के आसपास भी जल स्तर जो है वो पर्याप्त तो आपको मिलेगा सालों भर, तो इसमें हम सरकार को दोष क्यों देंगे। हम अपने घर को पूरे पत्थर कंक्रीट से पूरा भर देते हैं और अपने घर का जो पानी है वो सड़क पर बहाते हैं,
1: फिर खुद परेशान होते हैं।
0: तो ऐसे में हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि हमारा जो अपना कर्तव्य है, इस कर्तव्य का जरूर निर्वहन करें और एक हम जिम्मेदार और एक सफल नागरिक बने।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: सिर्फ प्रबंधन को ही दोष देना सही नहीं है,
0: बिल्कुल नहीं दोष देना,
1: हर एक इंसान को इसके लिए पहल करने की जरूरत है। जब तक हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो हम इन परेशानियों से जूझते रहेंगे।
0: कहते हैं ना, बी केयरफुल एंड बी अवेयर, है ना, बिल्कुल इसलिए कहते हैं कि स्वयं से अगर हम जागरूक रहेंगे तो फिर औरों को भी हम जागरूक कर सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और ये आज के जमाने में ये बहुत बड़ी चीज है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आने वाले समय में जो जल की स्थिति होने वाली है मीनाक्षी, वो तुमसे हमसे छिपी नहीं है। हमारे रांची जो कहते हैं ना, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ये हमारा स्वर्ग हुआ करता था, है ना। आज गर्मी के दिनों में मीनाक्षी क्या स्थिति रहती है, और हमारे पता है मीनाक्षी, कांके रोड जैसे ये पॉश एरिया में, जहां पर हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जल, गर्मी के दिनों में जल का ये हाल रहेगा, बड़े बड़े जो फ्लैट्स में, मीनाक्षी मैं, मेरे कई फ्रेंड्स के फ्लैट वहां पर हैं, वो कहते हैं कि रितेश भाई गर्मी के दिनों मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, क्यों, तो उनका हजार हजार फीट बोरिंग किया हुआ वो फेल हो जाता है, क्यों होता है, वाटर प्रबंधन हम नहीं करते हैं, जल का दोहन शोषण हम करते हैं, भुगतेंगे कौन, हम भुगतते हैं, करने वाले हम ही, तो भुगतने वाले भी हमें, तो इस पर हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए। और हम अपने युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि आओ हम सब संकल्प लें कि हम अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को हरा भरा, जल से परिपूर्ण, बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर एक सफल सुसंस्कृत नागरिक होने का प्रमाण दें, है ना,
1: तभी हमारा भविष्य सुधरेगा,
0: बिल्कुल सुधरेगा।
1: तो अब थोड़ा अपने श्रोताओं को हम मौसम का हाल भी बता दें।
0: अरे बता दो बता दो,
1: क्या है कि जैसे मानसून के पूरे राज्य में फैलने और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र में झारखंड के सभी जिलों में बारिश शुरू हो गई है और सोमवार को यानी कि कल सबसे अधिक लातेहार में 35 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची में 15 मिलीमीटर, मेदिनीनगर में 13 मिलीमीटर, बोकारो में 15 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 2 मिलीमीटर, हजारीबाग में 3 मिलीमीटर, गुमला में 3 मिलीमीटर और कोडरमा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा मौसम का, मौसम हमारे अनुकूल हो रहा है समस्त राज्य में, तो ये हम सबों के लिए और हमारे किसान भाइयों कृषकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
1: और एक और अच्छी बात है कि लगातार बारिश से कई जिलों में तापमान में भी गिरावट आई है, जो गर्मी और उमस से लोग परेशान थे उससे थोड़ी राहत मिली।
0: अरे कल पता, कल मैं चादर ओढ़कर सोया था मीनाक्षी, है ना।
1: तो अब जब जैसा मौसम है तो हम मौसम के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं।
0: और कृषक भाई, अब आप तैयार हो जाइए, मौसम आपका साथ दे रहा है तो अपने अनुरूप अपनी तैयारी करें और खुशहाल राज्य राष्ट्र की परिकल्पना में अपने आप को आगे बढ़ाएं।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम जोहार रांची में, है ना मीनाक्षी। एक बात तुम्हें मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी जी उन्होंने उनका एक टैलिस्मान यानी उन्होंने एक ताबीज दिया था, कहते हैं उन्होंने वो लिखते हैं जब भी तुम्हें कोई संदेह हो या तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी होने लगे, स्वयं पर यह परीक्षण करो। उस समय सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा याद करो जिसे कभी तुमने देखा हो, है ना, और अपने आप से पूछो कि जो कदम तुम उठाने की सोच रहे हो क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, क्या उससे उसे कुछ फायदा मिलेगा, क्या उसे अपने जीवन पर या फिर उसके भाग्य में कोई इससे परिवर्तन होगा, क्या इससे उन लाखों भूखों और आध्यात्मिक रूप से वंचित लोगों को स्वराज मिलेगा। तब तुम यह पाओगे कि तुम्हारा संदेह और अहंकार तुम्हारा पिघल रहा है। कितनी बड़ी बात महात्मा जी ने कहा, पता इससे क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है, कहते स्वयं से देखो, नहीं कहते हैं कि जब अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, देखा दिल जब अपना तब फिर जाना दूसरे का हाल, है ना। हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन जब
2: दूसरों के दुख को देखते हैं तो फिर हाँ,
1: उस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं ना।
2: हाँ बिल्कुल, हाँ। तो गाने तो बने हैं, लेकिन ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने जो गांधी जी के द्वारा कही गई है, जो हम सभी को एक सीख देकर जाती है।
1: मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो फिर मैं अपना गम भूल गया, है ना। तो ऐसी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आज के बदलते परिदृश्य में जब हम स्वयं पर केंद्रित हो रहे हैं, हम बिल्कुल स्वार्थवश जीवन, चाहे वो हमारे, मैं अपने आज के युवा को भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं, या तो फिर मोबाइल, या तो फिर लैपटॉप, या तो फिर कंप्यूटर, या फिर इंटरनेट, एक कमरे में बंद होकर उनकी अपनी दुनिया है। ऐसे में वो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे माँ बाप भी रहते हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए, उनके बारे में, उनके सुख दुख के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा गंभीर बात मीनाक्षी मैं तुमसे कह रहा हूं, और शायद तुमको लगता भी होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, है ना। तो शायद इस पर मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमेशा अपने आप में केंद्रित होकर ना रहें,
2: दूसरों के दुख के बारे में
1: सोचें। अपने घर परिवार से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं कभी, मैं तो ये देखता हूँ,
2: दुख बांटना ही इंसानियत है। बिल्कुल,
1: हाँ हाँ। मीनाक्षी कभी तुमने देखा, अगर संयुक्त परिवार किस लिए होते थे? इसलिए होते थे कि सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई होती थी। आज भी हम यदा कदा अगर हम कभी देखते हैं कि अगर आज तो सब फ्लैट कल्चर आ गया है, माँ पिता कभी गाँव में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, ऐसे में मैं एक कहता हूँ कि कभी तुम अगर अपने ऑफिस से लौटते हो तो अपने वृद्ध माँ बाप के पास जरूर जाकर 10 मिनट के लिए बैठो, उनके पास बैठकर जरूर चाय पियो और उनसे थोड़ा शेयर करो कि पिताजी आज आपने दिन में क्या किया, कैसा रहा आपका दिन। अपनी माताजी से पूछो कि माताजी आपने कुछ किया, आपने एक्सरसाइज किया, कुछ किया।
2: ये तो बात बहुत देखना मीनाक्षी, क्योंकि उनका जो अनुभव है ना वो हमारे लिए अनमोल है।
1: तो ये जो हार्मोनल फीलिंग्स होती है ना, मैं तो मीनाक्षी, मैं तो बहुत क्या बताऊं, मैं ये सब एक्सपेरिमेंट में करते रहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त है
2: अलग अलग लोगों से अलग अलग
1: प्रांतों में जाकर, बहुत दूर दराज भारत के हर प्रांत में मैं जाता हूं और महीने में 10-15 दिन में जाता ही जाता हूं। तो मुझे ऐसे युवा पीढ़ी, अधेड़ वयस्क, वृद्ध, हर लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके माँ पिता के पास जाकर बैठता हूँ, और जब मैं उनसे दो शब्द दो बातें करता हूँ वो बिल्कुल मुझे मेरा नंबर लेकर मुझे वो जरूर फोन करते हैं। तो ये कहने का सार ये है मीनाक्षी कि आप जो अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उनके पास जरूर 10 मिनट ही जरूर निकालें, तो देखिएगा उनका उत्साह और उनकी उनका जो हार्मोनल फीलिंग होगा ना उनमें कितनी चमक आए कि मेरा पुत्र आता है, मेरी पुत्री आती है और बैठकर आज सारा दिन में क्या किया, कैसे क्या खाया, क्या पिया, क्या चाय पिया, कैसे आगे देश दुनिया में क्या हो रहा, 10 मिनट ही आप बैठ लोगे ना तो देखना उनके चेहरे की चमक एक अलग,
2: बिल्कुल उन्हें एक अलग खुशी मिलती है। और ये मैं जैसे देखा जा रहा है आजकल के जमाने में थोड़ा ये कल्चर थोड़ा अभी विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसे हमें बचा कर रखना है और अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का हमेशा आदर करते रहना है।
1: अरे और उनका आशीर्वाद हमारे लिए पता है भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। और हम अपने युवा बच्चों से, युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबसे आप संपर्क रखो, सबसे बात करो, सप्ताह में 2 ही दिन समय निकालो बट फोन से आप बात करो, वीडियो कॉलिंग करो,
2: अपने परिवार से जुड़े रहना,
1: जुड़े रहो। और पता है मीनाक्षी, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो ये देखता हूँ कि शायद हमारे बच्चों को हमारे जो डिस्टेंट रिलेटिव है उनके बारे में पता ही नहीं है कि हमारे ताऊ ताई फूफा फाफी के जो बच्चे थे वो शायद उनके कजन्स ब्रदर कैसे हैं, है ना?
2: बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल,
1: क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
2: बिल्कुल सही बात है, ये आजकल के बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता है कि हाँ हमारे रिलेटिव्स कहाँ कहाँ तक, कितने दूर तक हैं और उनका क्या है रहना, उनका कल्चर क्या है, या फिर हमारे पुराने जमाने में जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका हम भी, उनको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं।
1: हाँ, तो समझने पाने के लिए क्या होगा, आपको अपना थोड़ा सा समय निकालना होगा अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने साथ में, अपने दोस्तों साथ में, आपके हितैषी के लिए एक बार करके देखिए ना, इतना सुकून, इतना मजा आता है ना, वो फीलिंग्स जब आपको वो वाइब्रेशन मिलेगी ना, पता मीनाक्षी, मैं अभी ट्रेन में सफर कर रहा था और पता नहीं कैसा संयोग हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे और बातों बातों में वो मुझसे पूछे तुम्हारा नाम क्या, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद फिर पूछे नाम जब जाने तो बड़ा उत्सुकता हुई, अरे नाम तो तुम्हारा ये है, तुम किस जगह से हो, फिर मैंने

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: जो है रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का।
2: आज पता है तारीख क्या है मीनाक्षी? आषाढ़ 16 शक संबत 1948
1: यानी 7 जुलाई।
2: 7 जुलाई है ना। और ये पता है ये सप्ताह ये क्या चल रहा था?
1: अभी तो वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है यानी कि वृक्षों का त्योहार।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: और भारत वर्ष में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है ये सप्ताह, और आज है 7 जुलाई। यानी आज तक ये मतलब यह कहने का मतलब है
2: क्या कि ये तो फिर देता है ये वन महोत्सव,
1: ये बिल्कुल कि हमें
2: और मनाने का ये उत्सव मनाने का क्या है, इसकी क्या सोचती हो तुम, क्यों ये उत्सव मनाया?
1: बिल्कुल, ये देश में वनों को घटते क्षेत्र को बढ़ाना है। बिल्कुल, यानी कि हमें पर्यावरण के प्रति सजग होना है।
2: यानी मिला जुलो के बात आ जाती है हमारे अपने पर्यावरण की, हमारे अपने भविष्य की, हमारे अपने धरती के जीवन की, धरती पर जीवन की। यानी वृक्ष लगाओ और धरती को बचाओ, एक वृक्ष सत पुत्र के समान।
1: बिल्कुल,
2: कितनी सारी बातें हमारे शास्त्र से लेकर हमारे मनुष्यों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई, इन सबों का वैज्ञानिक हमारा तर्क है, है ना, तर्क के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है।
1: तो वन महोत्सव जो है ये तो फिर सिर्फ जागरूक करने के लिए लोगों को मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए हमेशा हमें सजग रहना है कि हम अपने वनों को बचाएं, अपनी हरियाली बचाएं और अपनी धरती को बचाएं, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस पे हमारा जीवन है और जीव जंतुओं का भी जीवन है, सिर्फ हमारा ही नहीं।
2: वन महोत्सव सिर्फ हम कमरे में बैठकर एक बोलकर गोष्ठी कर वन महोत्सव बनाने से हमें अपने उद्देश्य की
1: पूर्ति नहीं
2: पूर्ति
1: होती,
2: फलाफल नहीं होगा। ऐसे में हमें आगे आकर अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभाकर कम से कम एक पौधा तो हम जरूर लगाएं।
1: और पता है, और पता है ये वन महोत्सव है जो जुलाई में ही क्यों मनाया जाता है?
2: ये देखो आषाढ़ का महीना है, है ना?
1: क्योंकि जुलाई का जो समय होता है मॉनसून के आगमन का होता है, जो नए पौधों के रोपने और पनपने के लिए सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है।
2: हाँ, इस समय अगर हम वृक्षारोपण, पौधारोपण करते हैं तो उसके बचने की संभावना बहुत अच्छी रहती है।
1: हाँ, हाँ।
2: क्योंकि उसे प्रकृति अपने आप सींच देती है, है ना। और अगर ये 3-4 महीने अगर ये पौधे रह गए तब तो फिर उसे आगे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे मवेशी से बचाना है। वो 1 साल बचा दीजिए, फिर वो आपका देखिए वो पुत्र 5 साल में कितना बड़ा हो जाता है
1: और वो आपको कितने फल देगा,
2: कितने फल देगा, कितने ऑक्सीजन देगा।
1: हाँ।
2: आपको छाया देगा, आपके आपके क्या कहते हैं, जलस्तर को बनाकर रखेगा,
1: पूरे वातावरण को शुद्ध करेगा,
2: शुद्ध करेगा। तो ये करना चाहिए, करिए तो फिर देखिए मजा देखिए उसका।
1: और इसकी जागरूकता की जो महत्व है इसका, ये है कि लोगों को वनों के महत्व, वायु को शुद्ध करने वाले ऑक्सीजन के चक्र और मिट्टी के कटाव को रोकने के बारे में शिक्षित किया जाता है। जागरूकता का मकसद ये है।
2: इसलिए हम कहते देखते हैं ना, हर स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी ये महोत्सव बढ़ चढ़कर मनाया जाता है कि हमारी नीचे की पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी सब इससे अवेयर होकर अपना कम से कम समाज के लिए कुछ तो कर दे, ताकि ये धरती, ये पर्यावरण, ये प्रदूषण से हम कुछ तो बचें, कुछ तो बचें, ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ तो हम बचें। और बच सकते हैं तभी जब हम पौधारोपण करेंगे, तभी एकमात्र उपाय, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ये कि हम उसका दोहन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं,
1: और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता।
2: कुछ
1: एक पौधे का रोपण अगर हर एक इंसान भी करे तो फिर ये काफी है।
2: हाँ।
1: लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है।
2: कितनी बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, उन्होंने शुरू किया ना एक पौधा माँ के नाम, है ना, अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाओ। क्यों? माँ जैसी माँ सम्मानित, जैसी माँ वरदाई, वैसे ही वृक्ष सम्मानित, वृक्ष वरदाई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं सलूट करता हूँ कि वो देशवासियों से ऐसी अपील करते हैं, जनमानस से ऐसी बातें करते हैं कि आइए एक पौधा कम से कम माँ के ही नाम से लगा कर देखिए, है ना। 5 साल बाद आपको दिखेगा, जब आप उस वृक्ष के नीचे खड़े रहेंगे तो फिर आप याद करें कि हमने क्या किया है ना, हमने अपने समाज के लिए, अपने अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए क्या किया,
1: ये हमारे लिए हित में है, हमारे पर्यावरण के हित में है, इसलिए हमें इस बात को समझना होगा।
2: हाँ, सिर्फ महोत्सव मनाकर एक खाना पूर्ति कर हम गोष्ठी कर नहीं बचे, और जरूर एक पौधा लगाएं और एक सफल जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं,
1: अपनी पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाएं।
2: हाँ, हरा भरा बनाकर ऐसा बनाएं कि हमारा जो राष्ट्र पक्षी मोर है
1: वो भी
2: उसमें चारों तरफ, मैं कई जगह जाता हूँ वहाँ मुझे मोर दिखते हैं, तो ऐसा हो जाए कि हर जगह मोर नाचे, है ना?
1: और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे वन बचेंगे तभी हमारे जीव जंतु भी बचेंगे, उनका संरक्षण भी वहीं होता है।
2: और मोर का नृत्य हमें दिखाई देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक गीत भी सुनवा देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: शिमारू के नए

0: लुक छुप बाधा कर लीजिए, है ना। चलो अगला सेगमेंट क्या कह रहा है आगे का?
1: अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास की,
0: इतिहास के बारे में। हाँ। आज जो है जन्म हुआ था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का।
1: हाँ, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनकी पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के स्थित गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसी कारण इनका नाम गुलेरी से जुड़ा।
0: क्या बात है।
1: और इनकी योग्यता के बारे में भी बताएं अपने श्रोताओं को कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन और फ्रेंच जैसी भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। और इनकी रचित जो कहानियां हैं उनके बारे में भी हम जरूर बताएंगे अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल,
1: तो उनकी कहानियां जो है वो है उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और उन्होंने जो निबंध लिखा वो कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठाऊं और पुरानी हिंदी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो एक हम इस अवसर
0: ऐसे
1: पर
0: महान शख्सियत को हम नमन करते हैं, उन्हें सत सत प्रणाम करते हैं।
1: तो इस अवसर पर एक
0: गाना बिल्कुल सुनाओ।

0: हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं आज के, तो आज है 7 जुलाई। तो
1: और आज बड़ा ही खास दिन है हमारे झारखंड के एक सितारे का, है ना? क्या सितारा है वो?
0: खास शख्सियत की बात कर रहे हैं हम।
1: एक ऐसा छोटा बच्चा, एक ऐसा सितारा जिसने हमारे राज्य ही नहीं हमारे देश का नाम पूरे विश्व के परचम पर लहराया, ऐसे हमारे महान खिलाड़ी,
0: बिल्कुल,
1: जिन्हें हम प्यार से कहते हैं
0: माही,
1: माही महेंद्र, अपना महेंद्र सिंह धोनी।
0: इनका जन्म 7 जुलाई को रांची के बिहार में हुआ था, जो पहले बिहार था, वर्तमान में झारखंड है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और पूर्व भारतीय कप्तान जिन्हें प्यार से हम अभी जी
1: माही कहते हैं ना,
0: कहते हैं। हाँ।
1: बचपन से वो प्रतिभा,
0: और कैप्टन कूल भी इन्हें कहा जाता है।
1: कूल, उसने एक से एक पता नहीं एक से एक रिकॉर्ड कायम किया, और वो बचपन से ही बड़ा शर्मीला, बड़ा चुपचाप रहने वाला बालक था, जो इतना प्रतिभावान बना कि हमारे देश के लिए दो दो वर्ल्ड कप उसने जीते और कई कीर्तिमान स्थापित किए, हमारे राज्य का नाम राष्ट्र के फलक पर लाया और राष्ट्र का नाम विश्व में बताया।

0: 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में और चैंपियंस ट्रॉफी भी उसने अपने कप्तानी में हमारी टीम को विजयी दिलाई है ना।
1: तो उन्हें शुभकामनाएं
0: और हम उन्हें कहते हैं माही हैप्पी बर्थडे।

पान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का कट।

एक बार फिर से हमारे कैप्टन कूल माही को हैप्पी बर्थडे। और साथियों, आज का दिन 7 जुलाई, इतिहास में कई महान हस्तियों शख्सियतों का आज के दिन निधन हुआ था। ऐसे में एक हमारे जाबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा, सन 1999 यादगार दिन, जब कारगिल युद्ध हमारे पड़ोसी देश ने हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजा था। ऐसे में कारगिल युद्ध के दौरान 0.4875 यानी वो हमारा एक हमारे देश की सीमा का एक पॉइंट था। बड़ी जांबाजी, बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए भारतीय सेना के वीर अधिकारी कैप्टन बत्रा ने उस पॉइंट को बचाया था और कई दुश्मनों को मार मार कर उसको छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे वीर को परमवीर विजेता का सर्वोच्च बलिदान दिया गया। ऐसे परमवीर को हम सत सलाम करते हैं और कहते हमें ऐसे जाबाज पर गर्व है, जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं, आज हम चैन की नींद सो लेते हैं। ऐसे वीर को सत सत प्रणाम है।

0: और देखते देखते जोहार रांची का वक्त भी अब समाप्त हुआ जा रहा है।
1: हम अपने श्रोताओं से कहते हैं आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। रितेश और मीनाक्षी को दे विदा। नमस्कार,
0: कार्यक्रम से
1: जोहार।
0: नमस्कार, जोहार।

श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 11:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं श्रोताओं? रितेश करता है आपको नमस्कार।

एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तो तेरा प्यार भी हमारा है।

ऐसा नजारा दिखे जहां टूटकर भी कोई शिकायतें नहीं, खुद को जोड़ने की हिम्मत है, जहां रिश्ते के बीच जीत हार नहीं बस निभाने की दरकार है, निभाने की नीयत है। और ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा जरूर है हमारे और आपके बीच ये जो रिश्ता है ये बस बना रहे, चलता रहे।

0: ऐसे जज्बात, ऐसे एहसास हमारे आपके बीच तो हमेशा से रहता ही है। लेते हैं छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में.

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम ही संपन्न होता है साथियों। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दिन के 12 बजे हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी लता और हम सबके साथ है हम सबकी प्यारी सखी निधि।
1: तो बहनों, स्वीकार करें निधि का भी प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और बारिश का मौसम है तो आप सभी घर में बैठी होंगी और
0: गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रही
1: होंगी। तुमने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मैं तो यही बोलने जा रही थी। खैर चलो, बहनों को पता तो चला। हाँ। और मैं जानती हूँ कि हम भी यही करके आ रहे हैं और हाँ। बहनें भी यही प्लान कर रही होंगी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो अब बता दो कि आज कार्यक्रम में क्या क्या है।
0: आज हम बहुत ही खास वार्ता और बहुत ही खास जानकारी बहनों को लेकर के आए हैं। और बहनों, वाकई ये जो मौसम है ना, हम सबको आनंदित कर देती है, क्योंकि जैसे कि हमने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े की बात की और इसके साथ ये प्रकृति का खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की ये छटा वाकई देखते ही बनता है। तो बहनों, प्रकृति ने हमें कितनी अनमोल उपहार दिए हैं, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, और हम इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन हम एहसास ये बहुत कम ही कर पाते हैं कि हमें प्रकृति के लिए क्या करना है, है ना? क्योंकि जो भी है, बल्कि हम कह सकते हैं लता कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो प्रकृति की वजह से ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब वक्त आ गया है कि हम भी ये सोचें कि हमें प्रकृति के लिए क्या करना है।
0: बिल्कुल, प्रकृति संतुलन की जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहनों, आज हम इसी विषय पर, जैसा कि निधि ने कहा था कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो आज इसी विषय पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये चर्चा। और हम सभी के जीवन से ये चर्चा जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रकृति संतुलन हमारी जिम्मेदारी है।
1: हाँ सही कह रही हो लता, प्रकृति हमें जीवन देती है। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्वच्छ हवा, जल, उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जितनी भी चीजों पर हम निर्भर करते हैं ना, सब प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति माँ के समान

0: बल्कि हमारी माता ही है जो हमारा पालन पोषण इतने प्यार से करती है। और प्रकृति का जो संतुलन है ये बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए बहुत सारे कदम हमें उठाने भी चाहिए, क्योंकि आजकल देखो लता प्रदूषण कितना बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और बहनों, ये प्रकृति जिसे हम माँ कहते हैं, वो प्रकृति जो है वो अनमोल देन है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने इस संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है, बीमार कर दिया है। और इसका परिणाम हम जलवायु परिवर्तन, भीषण गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और घटते जो भूतल है, स्वर है, वो सभी हम इसको देख रहे हैं और हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ये क्या किया है।
0: बिल्कुल सही कहा लता, क्योंकि मानवीय गतिविधियां जो हैं, मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियां जो हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सभी जानते हैं, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में ना लता हम इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस परिणाम की तुमने बात की, तो ये परिणाम तो हम सभी देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात लता जो तुमने बताई वो है जलवायु परिवर्तन। अब देखो कि हम जिस मौसम का उम्मीद करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अभी ये मौसम होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हो जाता है। आजकल तुमने देखा होगा कि बदलाव कितनी जल्दी आ जाता है ना, अचानक से आंधी तूफान हम देखते हैं, या फिर कभी सूखा, जैसे बारिश की कमी या बारिश की अधिकता। तो ये सभी जलवायु परिवर्तन है। तो ये क्या है? ये प्रकृति का संतुलन है।
1: बिल्कुल बहनों, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो लता, यदि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, प्रयास करें, तो ये छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर ना एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को इसकी आदत डालनी चाहिए। और ये जो छोटे छोटे कदम उठाने हैं, ये सभी उम्र के लोगों को उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा पीढ़ी इसमें शामिल होगी या जो वयस्क हैं उन्हें शामिल होना होगा, बल्कि बच्चों को भी इसके बारे में बताना ये बेहद जरूरी है।
1: बेहद जरूरी है। और जब नई पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझेगी, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। क्योंकि बहनों, प्रकृति बिना हम अपने आप के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, यह असंभव है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी।
0: बिल्कुल, प्रकृति तो हमारी रक्षा करती ही है, पालन पोषण करती है, लेकिन अगर हम इसका संतुलन बनाए रखेंगे तो आगे चलकर जो भयंकर परिणाम हो सकते हैं उससे हम बच सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकेंगे और उनको एक हम उज्ज्वल भविष्य दे पाएंगे।
1: हाँ, क्योंकि प्रकृति संतुलन केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। एक और भी जिम्मेदारी बनती है बहनों, और निधि हमको लगता है कि वो जिम्मेदारी के बारे में जानती
0: लता हो। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ, क्योंकि बातें तो हमने बहुत कर ली और बहनों को इंतजार होगा अब कुछ मनोरंजन का। तो ये खूबसूरत सा गीत है हमारी बहनों के लिए।
1: हाँ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब लता, कार्यक्रम में और क्या है?
2: बिल्कुल बहनों, आज हम प्रदूषण का हाल देख ही रहे हैं और आज हमने प्राकृतिक संतुलन की भी बात की, तो आज हम अपने भेंट वार्ता में इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज की हमारी खास मेहमान है सौम्याला तहजीब, जो एक शोध कार्य से जुड़ी है और इनसे बातें की हैं हम सब की रेडियो सखी निधि वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं बढ़ता प्रदूषण विषय पर ये भेंट वार्ता।
3: नो, प्रदूषण की समस्या गत वर्षों में काफी बढ़ रही है। यूं तो हम काफी कदम उठा रहे हैं इस दिशा में, लेकिन फिर भी प्रदूषण एक दानव का रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं सौम्याला तहजीब, जो कि शोध कार्य से जुड़ी हुई हैं। सौम्याला जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी।
3: सबसे पहला सवाल सौम्याला जी, कि जो प्रदूषण है उसके बढ़ने का कारण क्या है?
4: देखिए निधि जी, पहले हम ये समझते थे कि बढ़ते प्रदूषण को लोग केवल शहरों की समस्या समझते थे, लेकिन अब यह गांव तक भी पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के बारे में मेरा अब यही कहना है कि आज के समय की एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। हवा, पानी, मिट्टी और ध्वनि, सभी प्रकार का प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई लोगों को खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने लगी हैं। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां और गंदे पानी की समस्या बढ़ती है। यह केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। अगर आज हम सावधान नहीं हुए तो भविष्य में साफ हवा और साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रदूषण को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: बिल्कुल सही बताया आपने, और बहुत सारे इसके कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जो है हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। तो बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और हम सुनते भी रहते हैं कि बहुत सारा जो कार्य है वो इस दिशा में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: देखिए, प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। मनुष्य विकास और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां और उद्योग भी बढ़ रहे हैं। हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, धुआं और गंदा पानी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आजकल लोग सुविधा के लिए प्लास्टिक का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक निधि जी जल्दी नष्ट नहीं होता और यह जमीन तथा पानी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। शहरों में पेड़ कम हो रहे हैं और इमारतें बढ़ती जा रही हैं, इसी कारण हवा साफ नहीं रह पाती। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रदूषण हमारी अपनी आदतों और लापरवाही के कारण बढ़ रहा है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार करें तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
3: हाँ, और हमारी ही गतिविधियों की वजह से ये हो रहा है, और आमतौर पर लोगों को इसका एहसास कम ही होता है, क्योंकि हम विकास और आधुनिक जो जीवन शैली है उसकी होड़ में इतने लगे हुए हैं ना, कि हमें इस बात का एहसास कम ही हो पाता है। तो ये तो हो गए इसके कारण, और अब थोड़ा विस्तार से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण से कुछ खास बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं?
4: देखिए, वायु प्रदूषण से अस्थमा, सांस की बीमारी, खांसी, फेफड़ों की परेशानी और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारे नुकसान है। देखिए, आजकल छोटे बच्चों में भी एलर्जी और सांस की परेशानी देखी जा रही है। सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण आप देखिए, जल प्रदूषण से पीने का पानी खराब हो जाता है। इससे पेट की बीमारी, उल्टी, दस्त और कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। पानी गंदा होने से मछलियां और दूसरे जल जीव भी प्रभावित होते हैं। आज हम देख रहे हैं मिट्टी प्रदूषित हो रही है हमारी, तो मिट्टी प्रदूषण से हमारी खेती पर बुरा असर पड़ता है। जब मिट्टी में प्लास्टिक, केमिकल और गंदगी मिलती है तो फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है, इससे भोजन भी प्रभावित होता है। उसी से जुड़ा हुआ देखिए अब ध्वनि प्रदूषण भी है। तो प्रदूषण के कई एक दायरे हैं। आप देखिए जब ध्वनि प्रदूषण की कितना नुकसानदायक है, तेज आवाज, गाड़ियों का हॉर्न और लाउडस्पीकर से मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद की समस्या हो सकती है। तो प्रदूषण से हर तरह की समस्या है। मौसम का संतुलन भी बिगड़ रहा है, गर्मी बढ़ती है, बारिश का समय बदलता है और प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है।
3: बिल्कुल,
4: इससे प्रदूषण को केवल
3: तो जैसे ध्वनि प्रदूषण की आप बात कर रही हैं, तो इससे तो हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप देखें कोई भी आयोजन होता है तो उसमें बहुत तेज संगीत का बजना या जो गाड़ियों से जो आवाजें आती रहती हैं, तो इससे किन खास लोगों को दिक्कत हो सकती है ये आप बताएं।
4: देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है उससे हर व्यक्ति प्रभावित है। हम देखेंगे छोटे बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं घर के,
3: बिल्कुल,
4: और उसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द पालतू जानवर हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। आप देखिए कि जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो किस तरीके से वो परेशान होने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं जिनको दिल से बीमारी जुड़ी हुई है, उनकी मानसिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ता है।
3: बिल्कुल, और इस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं? यूं तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिसको उठाते हुए हम इससे थोड़ा बहुत निपट सकते हैं?
4: देखिए निधि जी, इस समस्या को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए हम सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ पहले से हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ वातावरण को साफ रखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वाहनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जहां संभव हो पैदल चलना चाहिए, साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े का झोला जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए, नदियों, तालाबों या नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए। फैक्ट्रियों और उद्योगों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। धुआं और गंदा पानी सीधे वातावरण से नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे बचपन से ही जिम्मेदार नागरिक बन सके।
3: बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया कि बच्चों को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तो घर पर ही हम बच्चों को छोटे छोटे कौन सी बातें जो है वो सिखा सकते हैं जिससे वो इस मामले में शिक्षित हो सके, क्योंकि बचपन से ही जो आदतें जो बन जाती हैं वो उम्र भर रह जाती हैं। तो परिवार में जो इसकी शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: देखिए हम अपने बच्चों को छोटी बड़ी चीजें घर में सिखा सकते हैं। जैसा आपने बताया उन्हें सूखा कचरा, गीले कचरे का जो पूरा एक रहता है मामला, उसे बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाना चाहिए। प्रदूषण किस तरह से उनकी जीवन शैली में बदलाव ला सकता है और एक गलत तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, उसके बारे में उन्हें अवगत कराना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना कितना जरूरी है, उनके साथ मिलके आप शाम में अपने बागीचे में कुछ आप पेड़ लगा सकते हैं। जिस दिन पर्यावरण दिवस हो उस दिन उनको लेके आप जाके सामाजिक कार्यों में जोड़ सकते हैं। इससे बच्चों में एक जागरूकता भी आती है और वे एक स्वस्थ जो एक सोसाइटी होती है उसका वो निर्माण कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो शमायला जी जो आपने बात बताई कि बच्चों को इसमें किस तरह से शामिल किया जाए, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। शमायला जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर हमारी श्रोता बहनों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मिची जी।
2: तो बहनों अभी आपने सुना बढ़ता प्रदूषण विषय पर ये भेंट वार्ता, और आज की हमारी भेंट वार्ताकार थी शमायला तहजीब, जो एक शोध कार्य से जुड़ी हुई है और इनसे बातें कर रही थी हम सबकी रेडियो सखी निधि वर्मा। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो निधि कहाँ चलने का इरादा है?
1: बस फिर से मनोरंजन की दुनिया में।
2: हाँ हाँ, तो चलो चलते हैं बहनों के साथ, इस मौसम का आनंद लेते हैं।

0: तो लता सच हमें भी लगता है कि हम भी पंछी होते और नील गगन में उड़ते रहते हैं ना।
1: बिल्कुल, तुमने मेरी मन की बात कह दी कि अगर पंछी बनकर के आसमान में उड़ने का मौका मिल जाए ना
0: बिल्कुल।
1: निधि, तो फिर क्या बात है जीवन की
0: वैसे
1: रंगी।
0: लता बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ये बात जरूर भगवान
1: हाँ,
0: से मांगी होगी कि
1: कि
0: भाई
1: काश हम भी एक चिड़िया
0: हाँ
1: होते।
0: उड़ने का जो मन करता है ना वो सभी को किया होगा कभी ना कभी बचपन में।
1: बिल्कुल,
0: तो बचपन की यादें ताजा हो गई लता
1: हाँ बिल्कुल
0: इस गीत
1: बिल्कुल।
0: को सुनकर। और
1: और
0: अभी बचपन की ही बातें करेंगे कि बचपन में कौन सी अच्छी आदतें हमें डालनी चाहिए बच्चों को, उनके जीवन में क्या शिक्षा देनी चाहिए।
1: क्योंकि जिस तरह से इस तरह के गीत सुनकर के हमारे अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, तो वैसे हमारी जो जीवन जो अभी चल रही है उस जीवन में भी ऊर्जा की बचत जो है वो भी जरूर।

0: जरूरी है, क्योंकि अगर ऊर्जा होगा तभी तो हम संरक्षित रह पाएंगे। तो बहनों आज हमने बहुत सारी बातें की, प्रकृति संतुलन की और बढ़ते प्रदूषण की, तो अब हम बातें करेंगे कि ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। जो निधि ने बताया कि हम बचपन से अगर ये आदतें डालें ना, तो शायद हम आने वाली जो पीढ़ी है उसे कुछ सिखा समझा पाए।
1: हाँ, क्योंकि ऊर्जा तो हम हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम बिजली की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी उपकरण है, पंखा टीवी वगैरह जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अनावश्यक रूप से इन उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और ये आदत अपने बच्चों में भी डालें कि अगर कमरे में अगर कोई ना हो तो वहाँ पंखा ना चलाएं, बल्ब ना चलाएं, या और भी कुछ गैजेट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर दें, इससे ऊर्जा की बचत होगी।
0: बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है और फिर थोड़ी थोड़ी बचत से ही हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहनों अक्सर होता है क्या कि हम कमरे से जब निकलते हैं तो बिजली को यूं ही चलता छोड़ देते हैं, और बच्चे भी यही सीखते हैं हमें देख, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कमरे से बाहर निकले उस समय लाइट, पंखा, टीवी और अन्य उपकरणों को बंद करना ना भूलें, और बच्चों को भी ये आदत डालें।
1: और लता, जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम ऊर्जा की ही बात करें क्योंकि अगर थोड़ी दूरी पे हमें कहीं जाना हो तो आप पैदल जा सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको कार, स्कूटर, इन सब का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप इन बातों पर पहले ध्यान दें और जागरूक बने, तभी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और बहनों आजकल बहुत तरह के बल्ब आ गए हैं, लेकिन हमें LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है कि 70-80% तक की जो बिजली खर्च होती है वो हम बचा सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि दिन में हम खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, उन सबको खोल कर रखें ताकि सूर्य की रोशनी भी घर में प्रवेश हो सके, और इसी से हमारी जो बिजली की भी बचत हो जाए। बातें तो बहुत सारी हैं बहनों, लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने इशारा किया है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: तो हम चलते चलते बता दें बहनों की आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। तो अभी के लिए दें विदा अपनी सखियों निधि और
0: लता को।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

शो तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी निधि और लता के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 में है, पेश है फिल्म संगीत। मेहरबा हो के बुला लो मुझे जिस दम चाहो, कि मैं कोई गया वक्त नहीं हो कि फिर आ भी न सकूं। रितेश का प्यार भरा नमस्कार।

ऐसी बात, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई।

आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

सफल में शागिर्द में आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म शोर से, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत पेरीलाल, गीतकार इंद्रजीत सिंह और स्वर दिया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने।

0: वाकई जल ही जीवन है, पानी बिन सब सुन। लेते एक छोटा सा अल्प विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान

0: भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honor. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kogde and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the institution as a designated repository based on the recommendation of the National Biodiversity Authority. Designated repositories constitute an important component of India's biodiversity governance framework by preserving authenticated biological specimens. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Benchmark domestic equity indices were trading in positive zone during the afternoon session today. The Sensex climbed 132 points to 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:10 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू ही पूछताछ। राज्य में एसआईआर अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। सीईओ ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची से मांगा सहयोग। जेपीएससी बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल एमएस धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में झारखंड समेत देश भर के प्रतिनिधि और शोधकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
4: शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। जांच एजेंसी उनसे वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्त विभाग की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनके पुत्र रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरुआती 7 दिनों में 1,05,00,000 से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से BLA2 की भागीदारी सुनिश्चित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है।

0: रांची के बेड़ों में आयोजित राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 254 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 429 विद्यार्थियों के बीच साइकिल और आम के पौधे बांटे गए। मंत्री ने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। रांची में स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के सहयोग से 5 दिवसीय बांस इकोसिस्टम कार्यशाला जारी है। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार 7 जिलों की 5000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी एम चौधरी ने बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
1: ये ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया गया। ये 5 दिन का एक हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम एक इकोसिस्टम स्टेट में क्रिएट करें बैम्बू का और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर आए। हमारा इस योजना में 5000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने प्रोग्राम है 7 जिलों में।
0: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कराधान, व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ला रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के सहयोग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम के आज देर शाम तक आरोपी को लेकर शहर पहुंचने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेता नीरज सिंह की गिरफ्तारी पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आग्रह किया है।
2: जो भी आरोपी है अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बारे में हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया इनको नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर आरोप क्या है? आपका जो FIR है उसमें कोई आरोप स्पष्ट नहीं है। उनके ऊपर आरोप है जिसके कारण से उनको नामजद किया गया है, धाराएं लगाई गई।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आज सुबह के कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 0.4% की तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 78,592 पर और निफ्टी 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संताल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: कल में जो पूरा संथाल का इलाका मतलब साहिबगंज, काकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह यहाँ तक में आपको भारी बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। तभी सिस्टम के प्रभाव में अगले दो दिन तक लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 8 तारीख से हल्की से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम है।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही उनके रांची स्थित सिमलिया आवास के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ है। देश विदेश से फैंस सोशल मीडिया के जरिए भी धोनी को बधाइयां दे रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद सचिव शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक के अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शंभू शरण सिन्हा को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू हुई पूछताछ। राज्य में एसआईआर अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। सीईओ ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची में मांगा सहयोग। जेपीएससी बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल एमएस धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, 1:20 में आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार है गिरिजा देवी।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

श्रोतो, आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगजीत सिंह के गाए गजल। पहली गजल गुलाम अली।

श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत में गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगजीत सिंह के गाए चंद गजल। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से। दिन के 2 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: The end of the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
4: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने

0: कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
1: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:30 हुए हैं। पेश है जय भारती। हमारे देश के वीर जवानों, वीर सैनिकों को नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हम

0: श्रोतो, आप सुन रहे थे जय भारतीय कार्यक्रम, यही संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:55 होने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इनुमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें तथा पुराने रिकॉर्ड की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। साथ ही सभी जिलों को 14 जुलाई को BLO और BLA2 की बैठक के साथ चुनाव पाठशाला आयोजित कर पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी उनके पुत्र से भी पूछताछ कर चुकी है और दोनों के बयानों का दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने रामेश्वर उरांव के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया का होमवर्क चालू कर दिया गया है।
3: मेडिकल कॉलेज दे दिया, आप क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम आपको 3 से 4 महीने में हम चालू ही कर देंगे। फैकल्टी अभी से हमारा चालू हो गया होमवर्क। बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, फैकल्टी लाना पड़ता है, चलाने वाले के प्रोसेस होता है। अभी से हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं, डायरेक्टर खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, मैन पावर हम बहाली करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि 3 से 4 महीने में या जनवरी तक हम बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करा देंगे।
1: देवघर जिले का प्रसिद्ध आम्रपाली आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। देवघर से विशेष पैकेजिंग के साथ भेजे गए 1000 किलो आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंच गई है।

0: में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संथाल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोतो, आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी।
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी,
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी,
0: लेकिन विमलेश जी ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी, हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती।

0: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी,
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: हवाई अड्डा कितना शानदार है।
3: हाँ बेटा,
2: दादाजी तो कहीं

0: घर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
0: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम

0: चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
1: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ चलो।

0: मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा

0: बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है चलो, उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है।
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड है। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ कादिर, आओ आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए।

0: विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?

0: इतना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजित थे NCERT। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3:30 हुए हैं रांची मेलोडीज में। बहुत बहुत स्वागत, रितेश का नमस्कार।

0: अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें और पुराने रिकॉर्ड्स की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जुटे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद पूनम जी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4:02 हुए हैं। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम रिपोर्ट और प्रस्तुति स्वर है विश्वजीत पात्र, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपका स्वागत। आज के अंक में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों की और जानेंगे किन टीमों ने क्वार्टर फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। इसके बाद नजर डालेंगे भारत और आयरलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 श्रृंखला पर। फिर चर्चा होगी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही बात करेंगे सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक की, जिन्होंने अपने शानदार खेल और अद्भुत उपलब्धियों से विश्व टेनिस में अमित पहचान बनाई है। और अंत में खेल खबरों में रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची का, जहां प्रतिष्ठित डूरंड कप के रोमांचक मुकाबलों की मेजबानी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फीफा विश्व कप 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का उत्सव है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ साथ छोटी और उभरती हुई टीमों ने भी ऐसा प्रदर्शन किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों से लेकर नॉकआउट चरण तक हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नए नायकों की कहानियां सामने आती रही है, जहां एक और अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड जैसी पारंपरिक शक्तियां अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर कुछ अपेक्षाकृत छोटी टीमों ने भी अपने जुझारूपन और साहस से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि अब फुटबॉल का स्तर केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई टीमों ने दिखा दिया कि मेहनत, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी टीम किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकती है। फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक चरण यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर चुका है। ग्रुप चरण और शुरुआती नॉकआउट मुकाबलों के बाद अब केवल वही टीमें बची हैं जिन्होंने दबाव, चुनौती और कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित किया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में दुनिया की पारंपरिक फुटबॉल शक्तियों के साथ साथ कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना की। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने अनुभव और आक्रामक खेल के दम

पर एक बार फिर खिताब की दावेदारी मजबूत की है। टीम के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब उनकी नजर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर है। फ्रांस की टीम भी शानदार लय में दिखाई दे रही है। तेज गति, बेहतरीन आक्रमण और मजबूत मिडफील्ड के साथ फ्रांस ने अपने विरोधियों पर लगातार दबाव बनाया है। किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ी टीम के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। ब्राजील की टीम हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तकनीकी कौशल, रचनात्मक फुटबॉल और आक्रमण सोच के साथ ब्राजील हर मुकाबले में खिताब के प्रमुख दावेदारों में नजर आ रहा है। स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय टीम भी शानदार फुटबॉल खेल रही है। स्पेन का पासिंग गेम और पुर्तगाल की आक्रमण रणनीति उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों को लेकर फुटबॉल जगत में खास उत्साह है। इंग्लैंड की टीम भी इस बार संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का मिश्रण उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। पैराग्वे ने भी अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। कई विशेषज्ञों ने जिस टीम को ज्यादा महत्व नहीं दिया था वही टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुकी है। नॉर्वे ने अपने तेज और आक्रमण फुटबॉल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीता है। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और टीम की सामूहिक ऊर्जा उन्हें खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, बेल्जियम, मिस्र और इजिप्ट जैसी टीम भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचकर यह साबित कर चुकी है कि विश्व फुटबॉल का स्तर पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा हो चुका है। इस चरण का हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति लेकर आता है। यहां एक छोटी सी गलती पूरे विश्व कप अभियान को समाप्त कर सकती है, जबकि एक शानदार प्रदर्शन किसी टीम को इतिहास के पन्नों में अमर बना सकता है। यही वजह है कि राउंड ऑफ 16 को विश्व कप का सबसे रोमांचक चरण माना जाता है। अब हर पास, हर टैकल, हर बचाव और हर गोल करोड़ों प्रशंसकों की धड़कनों से जुड़ा हुआ है। आने वाले मुकाबलों में दुनिया की निगाहें अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन जैसे दिग्गज टीमों पर तो रहेगी ही, लेकिन फुटबॉल प्रेमी यह भी देखना चाहेंगे कि क्या उभरती हुई टीमें अपने सपनों की उड़ान को आगे बढ़ा पाती हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि फीफा विश्व कप 2026 का ये नॉकआउट चरण फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक बनने जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इस बार केवल दिग्गज टीमों ने ही नहीं बल्कि अपेक्षाकृत छोटी आबादी और सीमित संसाधनों वाली देशों ने भी पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जिन टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था वही टीमें बड़े बड़े फुटबॉल देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। सबसे पहले बात मोरक्को की। अफ्रीकी फुटबॉल की इस ताकतवर टीम ने अनुशासित खेल, मजबूत रक्षापंती और शानदार काउंटर अटैक के दम पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर और फिर राउंड ऑफ 16 में कनाडा को 3-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह साबित करता है कि मोरक्को अब किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है। इसके बाद बात कैप वर्दे की। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीपीय देश ने अपने पहले ही विश्व कप में इतिहास रच दिया। ग्रुप चरण में उसने स्पेन और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और नॉकआउट तक पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में उसने अर्जेंटीना जैसे विश्व चैंपियन टीम को अतिरिक्त समय तक कड़ी टक्कर दी और 3-2 से बेहद करीबी मुकाबले में हार कर भी पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। पैराग्वे ने इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया। 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर उसने पूरे फुटबॉल जगत को चौंका दिया। भले ही राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जुझारू प्रदर्शन से यह संदेश दे दिया है कि अब फुटबॉल में कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं माना जा सकता। नॉर्वे ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आइवरी कोस्टा जैसी मजबूत टीम को हराकर नॉर्वे ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। तेज गति, आक्रमण फुटबॉल और युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने इस टीम को विश्व कप की सबसे रोमांचक टीमों में शामिल कर दिया।
इन टीमों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक फुटबॉल में केवल इतिहास, रैंकिंग या स्टार खिलाड़ी ही जीत की गारंटी नहीं होते। सही रणनीति, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास पर कोई भी टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ताकतों को चुनौती दे सकती है। यही कारण है कि फीफा विश्व कप 2026 को छोटे देशों के बड़े सपनों और शानदार प्रदर्शन के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब बात उन खिलाड़ियों की जिनके प्रदर्शन ने इस विश्व कप को और भी यादगार बना दिया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की। 39 वर्ष की उम्र में भी मेसी जिस तरह मैदान पर खेल रहे हैं उसे देखकर दुनिया एक बार फिर उनकी प्रतिभा को सलाम कर रही है। अनुभव, सटीक पास, बेहतरीन विजन और गोल करने की अद्भुत क्षमता के दम पर मेसी लगातार अर्जेंटीना के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी का जादू बरकरार है। मेसी ने अब तक 7 गोल किए हैं। अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक 3 गोल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल और राउंड ऑफ 32 में कैपे वर्डे के खिलाफ उन्होंने गोल दागकर अपनी टीम को मुश्किल मुकाबले से बाहर निकाला और ये साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर ही अपनी असली पहचान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के सुपरस्टार केलियन एम्पापे भी शानदार लय में हैं। अपनी रफ्तार, तकनीक और बेहतरीन फिनिशिंग के दम पर एम्बापे लगातार विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। फ्रांस के कप्तान एम्बापे इस विश्व कप में अब तक 7 गोल कर चुके हैं और मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। एम्बापे ने नाइजीरिया, कोस्टारिका और स्वीडन के खिलाफ 2-2 गोल और राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे के खिलाफ निर्णायक पेनाल्टी गोल दागकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। और अब बात इस विश्व कप के सबसे बड़े अपसेट की। फीफा विश्व कप 2026 में यदि अब तक के सबसे बड़े उलटफेर की बात की जाए तो वो है 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना। जिस टीम को खिताब के प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा था वही टीम राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हार कर विश्व कप से बाहर हो गई। जर्मनी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। ग्रुप चरण के पहले मैच में उसने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। आइवरी कोस्ट के खिलाफ टीम अपेक्षित स्तर का खेल नहीं दिखा सकी और फिर इक्वाडोर से हार ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। हालांकि जर्मनी ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा लेकिन उसकी लय टूट चुकी थी। राउंड ऑफ 32 में जर्मनी का सामना पैराग्वे से हुआ। कागजों पर जर्मनी मजबूत था लेकिन मैदान पे पैराग्वे ने अनुशासित डिफेंस, शानदार रणनीति और जबरदस्त जुझारूपन का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ जहां पैराग्वे ने 4-3 से जीत दर्ज कर विश्व फुटबॉल को चौंका दिया। हार के बाद जर्मनी के कप्तान जोशुआ किमिख ने भी स्वीकारा कि टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकी और इस प्रदर्शन के आधार पर उनका बाहर होना निराशाजनक जरूर है लेकिन हैरान करने वाला नहीं। ये लगातार 3रा विश्व कप है जिसमें जर्मनी अपेक्षा से बहुत पहले बाहर हो गया। 2018 और 2022 में ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद इस बार 48 टीमों की प्रतियोगिता में भी वो पहले नॉकआउट मुकाबले से आगे नहीं बढ़ सका। इससे साफ है कि जर्मनी फुटबॉल को अब केवल खिलाड़ियों में नहीं बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और टीम निर्णय में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं उस T20 सीरीज की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। विश्व चैंपियन भारत को आयरलैंड ने लगातार 2 मुकाबलों में हराकर न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। जिस भारतीय टीम ने हाल ही के वर्षों में विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया वही टीम आयरलैंड के खिलाफ संघर्ष करती नजर आई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी गई। आइए शुरुआत करते हैं पहले T20 मुकाबलों से। पहले मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आयरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया। निर्धारित 20 ओवर्स में आयरलैंड ने 9 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण पारियां खेली और अंतिम ओवर्स में
तेज रन बटोरकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती विकेट जल्द गिरने से दबाव बढ़ता गया। मध्यक्रम भी बड़ी साझेदारी बनाने में असफल रहा। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। इस प्रकार आयरलैंड ने मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे आयरलैंड के गेंदबाज, जिन्होंने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरे और निर्णायक T20 मुकाबले की। पहला मैच जीतकर आयरलैंड आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर भारतीय टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरी थी। आयरलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मुकाबले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। 155 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए मुश्किल नहीं माना जा रहा था, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन बीच के ओवर्स में रन गति धीमी पड़ गई। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा। भारत को जीत के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी, लेकिन दबाव के क्षण में बल्लेबाज चूक गए। भारतीय टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और आयरलैंड ने मुकाबला मात्र 1 रन से जीत लिया। दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने जय मुंद्रा, जिन्होंने दबाव की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीरीज में आयरलैंड के खिलाड़ियों ने सामूहिक प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में आयरलैंड भारत से बेहतर नजर आया। यही कारण रहा कि आयरलैंड ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। अब सवाल उठता है कि आखिर विश्व चैंपियन भारत को हार का सामना क्यों करना पड़ा। सबसे पहला कारण था बल्लेबाजी की अस्थिरता। भारतीय बल्लेबाजी बड़ी साझेदारियां बनाने में असफल रहे। शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक कोई भी बल्लेबाज लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। दूसरा कारण था दबाव की स्थिति में गलत निर्णय। दोनों मैचों में ऐसे मौके आए जब भारत मैच पर पकड़ बना सकता था, लेकिन खिलाड़ियों ने जल्दबाजी में विकेट गंवा दिए। तीसरा कारण था डेथ ओवर्स में प्रदर्शन। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज अंतिम ओवर्स में रन रोकने में विफल रहे, वहीं दूसरे मैच में बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते समय आखिरी ओवर्स संयम नहीं दिखा सके। अब बात कप्तानी की। श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कई अच्छे निर्णय लिए, लेकिन मैदान पर उन निर्णयों को खिलाड़ी परिणाम में नहीं बदल सके। कप्तानी में आक्रामकता और रणनीति दोनों दिखाई दी, लेकिन टीम का निष्पादन कमजोर रहा। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज से काफी सीख मिलेगी, खासकर दबाव वाले क्षण में गेंदबाजों के उपयोग और बल्लेबाजी क्रम के प्रबंधन को लेकर। सूर्य कुमार की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को महसूस हुई। सूर्य कुमार केवल बल्लेबाजी नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। मध्य क्रम में उनकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कठिन परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता टीम को नहीं मिल सकी। दूसरी ओर आयरलैंड ने यह साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता केवल एक बड़े नाम से नहीं बल्कि बेहतरीन योजना, अनुशासन और टीम वर्क से मिलती है। इस सीरीज ने भारतीय टीम प्रबंधन को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले बल्लेबाजी, संयोजन, फिनिशिंग क्षमता और डेथ बॉलिंग पर विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। अगर इस सीरीज का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष देखें तो आयरलैंड क्रिकेट का उभरता हुआ आत्मविश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में आयरलैंड ने लगातार अपनी क्षमता दिखाई है और भारत जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस दिन आप विपक्षी टीम को हल्के में लेते हैं, उस दिन परिणाम आपके खिलाफ जा सकता है। आयरलैंड ने जज्बा दिखाया, अनुशासन दिखाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। वहीं भारत अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका। विश्व चैंपियन होने का तमगा सम्मान दिला सकता है, लेकिन मैदान पर जीत हमेशा वर्तमान प्रदर्शन से तय होती है और इस सीरीज में आयरलैंड का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा।
महिला टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत एक बार फिर कायम हो गई। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। कप्तान नेट साइवर व्रट ने नाबाद 58 रन और प्रिया कैंप ने नाबाद 44 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में सटीक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही आक्रमण अंदाज अपनाया। अनुभवी बल्लेबाज वेथ मुनी ने 49 गेंदों पर शानदार 64 रन बनाए, जबकि फीबी लिचफील्ड ने 35 गेंदों पर 48 रन की तेज तरार पारी खेली। दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कर दिया। अंत में एलिस पेरी ने विजयी रन बनाते हुए टीम को 17.1 ओवर्स में ही जीत दिला दी। वेथ मुनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026 में महिला टी20 विश्व कप जीतकर अपने रिकॉर्ड को और मजबूत कर दिया। यह खिताब सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि महिला टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को निरंतर श्रेष्ठता, अनुशासन और टीम वर्क का प्रमाण है। भारत का प्रदर्शन इस विश्व कप में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का अच्छा संतुलन था, लेकिन निर्णायक मौकों पर निरंतरता की कमी साफ दिखाई दी। भारत लीग चरण में ही बाहर हो गया और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज उस स्कोर का बचाव नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का सफल पीछा कर भारत की विश्व कप का यात्रा समाप्त कर दी। भारतीय टीम इस विश्व कप में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन बड़े मैचों में वही पुरानी कमजोरी फिर सामने आई, दबाव में निरंतर प्रदर्शन की कमी। बल्लेबाजी में स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत से बड़ी पारियों की उम्मीदें थी। गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में भारत ने अनेक मैचों में अच्छी शुरुआत की, लेकिन डेथ ओवर्स में रन रोकने में सफलता नहीं मिली। कैच छोड़ना और दबाव के क्षण में गलत गेंदबाजी योजनाएं भी टीम पर भारी पड़ी। भारत की सबसे बड़ी समस्या रही निरंतरता। कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन जब मुकाबला विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तब भारत अपने सर्वश्रेष्ठ खेल को दोहरा नहीं पाया। यही कारण रहा कि टीम लीग चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। टूर्नामेंट के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकारा कि टीम को अपनी नीति और प्रदर्शन पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि इस विश्व कप में भारतीय टीम के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी था। युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीदें जगाई। यदि बल्लेबाजी में निरंतरता, डेथ बॉलिंग और फील्डिंग में सुधार किया जाए तो यही टीम आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। सर्बिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने विंबलडन के पुरुष एकल मुकाबलों में अपनी 106वीं जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के 105 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए विंबलडन में सबसे अधिक पुरुष एकल मैच जीतने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। विंबलडन 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर न केवल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई बल्कि अपने करियर का यह स्वर्णिम कीर्तिमान भी स्थापित किया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने दबाव के क्षण में अपने अनुभव और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन किया। 39 वर्ष की उम्र में भी जोकोविच का फिटनेस स्तर, मानसिक दृढ़ता और जीत की भूख दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनके नाम पहले ही रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब दर्ज है और अब विंबलडन में सबसे पुरुष एकल जीत का नया रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। खेल खबरों में अब बात
झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची अब भारतीय फुटबॉल के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम करेगा। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि झारखंड के खेल इतिहास के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इस बार टूर्नामेंट में 24 में हिस्सा लेगी और मुकाबले देश के 5 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें पहली बार रांची को भी मेजबान शहर बनाया गया है। यह निर्णय झारखंड में फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और यहां उपलब्ध विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का प्रमाण है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में लीग चरण के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक खेले जाएंगे। इसके साथ ही एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले की भी मेजबानी यही स्टेडियम करेगा। लगभग 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। रांची में खेले जाने वाले ग्रुप सी के मुकाबलों में जमशेदपुर एफसी, श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम आमने सामने होगी। जमशेदपुर एफसी अपना पहला मुकाबला 26 जुलाई को डिफेंडर्स एफसी के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त को स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और 13 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स के विरुद्ध मैदान में उतरेगी। डूरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। वर्ष 1888 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने भारतीय फुटबॉल को अनेक महान खिलाड़ी और यादगार मुकाबले दिए हैं। आज भी देश के शीर्ष क्लब एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने का सपना देखते हैं। रांची को मेजबानी मिलने से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को का खेल देखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। इससे झारखंड में फुटबॉल संस्कृति को नई गति मिलेगी और युवा खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यापार और खेल अवसंरचनाएं को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल झारखंड में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा जुनून है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे जिलों में फुटबॉल की गहरी जड़ें हैं। गांव में आयोजित होने वाले स्थानीय टूर्नामेंट्स में हजारों दर्शक जुटते हैं और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इस खेल को करियर के रूप में अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डूरंड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी से झारखंड के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी। स्थानीय प्रतिभाओं को देश के शीर्ष क्लबों और खिलाड़ियों को करीब से देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही राज्य में फुटबॉल के विकास को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम क्रीड़ा जगत अभी आप सुन रहे थे। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर विश्वजीत पात्रा का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने वाले हैं। ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम युववाणी सुनिए 5:02 से। श्रमिक लोक इस कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 का। प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार पुनः सुनेंगे शाम 6:00। किसान वाणी इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:02 का।

हमारी दुनिया इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:32 से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 7:00 का। आदिवासी अखड़ा इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 7:15 से। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे खड़िया भाषा में। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता। आज आप सुनेंगे रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। वार्ताकार हैं अर्पिता रॉय, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:00 से। जानिए क्या है सुर्खियों में 8:30 पर। का वक्त होगा समाचार संध्या का हमारे दिल्ली केंद्र से। न्यूज @9 9:00 और उर्दू में समाचार 9:15 से।

मनी टॉक ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 से। मंथन इस कार्यक्रम का वक्त होगा 9:45 का। गुंजी झारखंड ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। अब लग रहा है ये मौसम बरसात का मौसम, ज्यादा कुछ नहीं तेरी याद का मौसम। इससे ज्यादा क्या समझे कुछ भी हम, हमसे तेरी ये कह रहा मुलाकात का मौसम।

माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, कुछ याद आया आपको? आज है 7 जुलाई, और 7 जुलाई को हमारे माही का जन्मदिन भी है, और आज वर्ल्ड चॉकलेट डे भी है। तो खा लीजिए, बीच बीच में कुछ मीठा होते रहना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपने गौर किया है, वक्त गुजरने के साथ साथ बचपन काफी पीछे छूटा हुआ मकान सा लगता है। कहना मुश्किल है बचपन के दिन अच्छे थे या आज के। वैसे उम्र के किसी भी पड़ाव पर खड़े हो जाइए, गुजरा वक्त यूं ही आपके सामने आता रहेगा।

न जाने कौन सी मंजिल पे आ पहुंचा है प्यार अपना, न हमको एतबार अपना, न उनको एतबार अपना।

मिट मिट के मोहब्बत में तेरी तुझको पुकारे जाते हैं, कट कट के दरिया के तह में जिस तरह किनारे जाते हैं।

देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। शफक धनक महताब कटाए, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांत सरगम अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ 2 टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है।

लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। और देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। श्रोताओं, सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 से 5:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार के गीत। संध्या के 5:30 से 6:00 तक होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें चर्चा की जाएगी दलहन एवं तिलहनी फसलों की खेती के बारे में। मनोरंजन होगा हो लोकगीत से चुई देवगम और साथियों के स्वर में। मौसम की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप भेंट वार्ता सुनेंगे, बाजार भाव बतलाया जाएगा और कुरमाली लोकगीत आप सुनेंगे मालवती महतो और साथियों के स्वर में। संध्या के 6:02 पर पुनः आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:30 पर आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:55 पर होगा कार्यक्रम संथाली में। उसके बाद आपको 6:55 पर लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आज कल। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8:00 आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा, ये भी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। रात्रि के 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 से 9:15 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10:00 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10:00 से 10:30 पर होगा कार्यक्रम महफिल, जो कि हमारे चाईबासा केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि के 10:30 से 11:00 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही, और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार के गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं छवि। आज आपको हम सुनवाएंगे एक ही संगीतकार अनु मलिक के संगीतबद्ध के कुछ गीत। तो सुनिए, सबसे पहले फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अन्नाड़ी का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। रानी मलिक के बोल

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार अनु मलिक के संगीतबद्ध के कुछ गीत। अब आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जुड़वा। पूर्णिमा और अभिजीत की आवाजें हैं, देव कोहली की बोल हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार अनु मलिक के संगीत बद की कुछ नगमे छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बीवी नंबर वन। शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज है और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, गुलदस्ता कार्यक्रम, माफ कीजिएगा श्रोताओं, आपको हम सुनवा रहे थे गुलदस्ता कार्यक्रम में एक ही संगीतकार अनु मलिक के संगीतबद्ध किए कुछ गीत। तो इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सुनीता हाँसदा और
1: डोबरो बुड़वल तिकिन पैते
0: जोहार। किसान भाइयों एवं बहनों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान भाइयों बहनों, हर बार की तरह हम फिर से हाजिर हुए हैं बहुत सी जानकारियों के साथ। और हर बार की तरह हम करते हैं शुरुआत में चर्चा। तो आज हम करेंगे दलहन एवं तिलहनी फसलों की खेती के बारे में चर्चा। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, दलहन यानी जो दालें होती है हम खाद्य पदार्थ में जिन दालों का इस्तेमाल करते हैं, और तिलहन जो तेल वाली फसलें होती है, इन सभी फसलों की खेती हम किस तरह से कर सकते हैं या इन फसलों की कौन सी किस्म हम उपजा सकते हैं जो हमारे उत्पादन को अच्छा फसल उत्पादन करने में मदद करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि की रीढ़ है जो दलहन और तिलहन फसल है। इसमें पोषण, खाद्य सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर, मूंग, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती हैं, जबकि तिलहन फसल जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये खाद्य तेल का मुख्य स्रोत है। अगर हम दलहन फसलों की बात करें तो इसमें मटर, चना, मसूर, उड़द और मूंग की फसलें जिनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, और तिलहन फसल जो सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी होती है। खेती की उन्नत प्रणाली अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो बातें होती है डोबरो जी, भूमि तैयार करना और इसकी तैयारी, इन फसलों के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। खेत की 2-3 बार अगर आप जुताई करके उसको पाटा लगाते हैं तो मिट्टी जो होती है वो पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है। बुआई का समय आपका जो है निश्चित समय होना चाहिए। बुआई का समय फसल के अनुसार तय होता है, जिसमें मुख्य खरीफ दलहन तिलहन की बुआई वर्षा के आरंभ यानी जो अभी हमारा जून जुलाई के बीच में की जाती है, जबकि रबी दलहन तिलहन जैसे चना और सरसों अक्टूबर और नवंबर के समय में बोए जाते हैं। बीज उपचार, जी हाँ किसान भाइयों बहनों, बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप बुआई करते हैं तो बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक या राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना जरूरी है। और सबसे ज़रूरी जो दूसरा है, जिसमें सिंचाई और खाद, जिस तरह से इंसानों को बढ़ने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए खाद यानी खाद्य पदार्थ जो खाना पीना हम खाते हैं और ये पानी जो मात्रा हम यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, इन सब की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह हमारा फसल भी सिंचाई और खाद बिना लिए वो अच्छी फसल नहीं दे सकता है। इसीलिए इसके लिए सबसे जो ज़रूरी होती है कि अगर आप दलहन और तिलहन की बहुत अधिक पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, सिंचाई केवल फूल आने और बीज बनते समय ही करें। बुआई के समय संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का आप उपयोग कर सकते हैं।
1: ऐसो सारे का जी चार संख्या को सुनीता आप किन किन जगह रखो है तीसिंग एनन चार चार दो समझान गया के डाली होती अंडो सुन मोती आ उत कुरी अचास भी सह रहे सारे के डाली ती डाली उत डाल के तो वही त्या उत कुर तो इस उपिसु में ना ना वो के तार याड़ी में ना कंसरे में ना मोगे में ना रंबा में ना चना में ना मटर में ना मिल लेकर का जी निया को अब नें जीत जीवन रचे नें जीत जरों रे नें डिगा उत कोरिया ऐसो गोरज में ना निना को वो चास जो चास वन रहता वो आरे बोगे लेकर तब जा वो संगीरी होगे बोगिन उत को वो जो में तिया वो नाम या अंडो सुनो लेकर ना को वो मना तो ना तो चल के मानी को वो चास जो में तिया दौर करा इन्हें ते इपिलो वो चास है ते ऊंची को वो चास है तिया दौर करा इन्हें ते ना तो चांडो बाबू मनी है चंडो लेकर चेना सूरजमुखी ना तो नुतुम रहता वो तो चंडो बाबू मनी होते तो उनका सूरजमुखी होगा मैंने उगाए नहीं थे तो इन्हें ना करे इस बुगे लेकर सुनुमन जीनिस था ना अलांग के अब तो ना तो ईसिंती आता मानी सुनुम को के पूरे तो जो में तिया तो वो चास्त ना अंडोगे इटाली का ना तो इटापा कुकुन का मटकम बिरते में ना डोला में ना इनको तो डोला को तो मैं तो इन्हें तो चास रहे तो कहा हो जो ना तो दारू रहे हो जो है
0: बिल्कुल
1: जारी हो गए चास गया को मर निलका डाली होते डाली कहते जो में ती अलिकन चास को अंडो सुनुम होती आ सुनुम भाई होती अलिकन आ को वो चास जो का अंडो निलका ते अपना जीत जो रंग रहे उको ना को अब उड़ू को पूरे लगे तो निलका ना को वो चास जो रगे

0: किसान भाइयों और बहनों, चुई देगम और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे हो लोकगीत। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको आज के मेहमान भेंटवार्ता में सुनवाते हैं शकरकंद की खेती के बारे में, जिसे जानकारी दी है रोड़ो बुढ़ीवली जी ने और उनके साथ बातचीत में है डोबरो बुढ़ीवली। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ और जरूरी संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बात है, हमारा जो खेल चलता तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिले हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक।

0: कर
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
6: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे मालवंती महतो और साथियों के स्वर में ये कुड़माली लोकगीत। इसी गीत के साथ ही आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुनीता हाजदा और
1: दोबरो बड़ो लिखिन पैते
0: जोहार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा केरकेटा के नेतृत्व में गठित पुलिस की छापेमारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सुलोच

0: नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: हिंसा से सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बड़ा परिवार जो तो मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कागे आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए है
6: मुतुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रियल तपाम ना रियल वाह बेटा मिका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दूर रन गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱚᱨᱟᱣ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱮᱠᱤᱛ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱟᱨᱚ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱫᱩᱵᱨᱟᱡᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱰᱷᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ
9: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱝ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱫᱟᱫᱟ ᱫᱟᱹᱭ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱮᱞᱤ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱩᱞ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱵᱨᱟᱡᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱟᱢᱫᱮᱥᱟᱹᱭ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱟᱡᱽᱱᱚᱜᱚᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱨᱟᱭᱠᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱢᱫᱮᱥᱟᱹᱭ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱷᱳᱴᱟ ᱢᱳᱴᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ
10: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ
9: ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ ᱟᱨ ᱡᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱢᱵᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱩᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱨᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱞᱟᱝᱲᱟ ᱢᱤᱭᱟᱡᱟᱠᱤ ᱵᱟᱨᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱧᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱨᱟᱦᱮᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ? ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱭ ᱦᱳᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱦᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ, ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱱ, ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱚᱵᱤᱱ?
9: ᱦᱳᱭ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱜᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
10: ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟ?
9: ᱦᱮᱸ, ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ,
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ
9: 4 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱜᱟᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ,
10: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱹᱠᱩ?
9: 750 ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱰᱮ 6 ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ,
10: ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱤᱞᱤ
9: ᱱᱟᱥᱮᱞ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ,
10: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ,
9: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱩᱦᱤ, ᱠᱟᱛᱞᱟ, ᱤᱪᱟᱹ, ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ 6 ᱠᱤᱥᱤᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ,
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ?
9: ᱯᱩᱴᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ,
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱟᱹᱧᱚᱜ?
9: ᱦᱳᱭ, ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 4 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 250 ᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
10: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱜ,
9: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ।
10: ᱱᱩᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ?
9: ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱨᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱱᱟ,
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ,
9: ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱴᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱩᱠ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ,
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ,
9: ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱯᱟᱹᱨᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱚ, ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱟᱠᱚ,
10: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ। ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱢᱮᱠᱤᱛ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱪᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱴᱮᱰ ᱯᱷᱟᱨᱢᱤᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ, ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱟᱯᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ।
9: ᱦᱳᱭ,
10: ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ
9: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ
10: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝ?
9: ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱫᱚ।
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱢᱟᱱᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ
9: ᱜᱮᱭᱟ,
10: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ
9: ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨᱟᱜ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱥᱟᱵᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ।
10: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ, ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱱ ᱞᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨᱟ?
9: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱞᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ।
10: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ

0: ᱢᱟᱪᱞᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱦᱟᱨ ᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾
1: ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱦᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ᱾ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱞᱤᱧ ᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱯᱷᱤᱭᱩᱪᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ?
1: ᱯᱷᱤᱭᱩᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 2 ᱥᱟᱞ ᱜᱮ ᱥᱴᱟᱨᱴᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ᱾
1: ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱮᱞᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱞᱤᱧᱟ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ, ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱟᱡᱟ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱛᱟᱡᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱡᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱯᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱞᱯᱷᱮᱴ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱥᱟ,
1: ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱥᱟ᱾ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱵᱤᱱ, ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱥ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱥᱚᱞᱚᱯ ᱚᱡᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱴᱷᱤᱠ᱾
1: ᱵᱷᱟᱵᱤᱥ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱮᱢ,
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ
1: ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ
0: ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱢᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ
2: ᱵᱟᱨᱚ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱤᱛ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱩᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ᱾
3: करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
7: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार, देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
8: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: बुयामसी को दिलाते हैं आंकड़ा मुचिर रे मी दोंग सरिंते बुन रस्को जंगा सपड़ावा का को राम किसको और सौतेन को।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंड कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण

0: विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग तथा मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, पर्याप्त चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि रथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। रामगढ़ जिले के पतरातु स्थित रसदा गांव में विस्थापन समस्या को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
2: विस्थापन की समस्या जब झारखण्ड राज्य अलग मना था तो विरासत पे ये समस्या झारखण्ड राज्य को प्राप्त हुआ और विकास के नाम पर अगर उनकी जमीन कोई ऐसे कंपनी लेता हो तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अनुप कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा राज्य सूचना आयोग की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं की ओर से संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल से किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180% अधिक मूल्य मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा दोषियों और लापरवाह

0: अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया गया।
1: तो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में दो युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है, अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के बहन में जाकर घुसने का काम और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस बहन ने भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया।
0: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। जो किसान मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीमती तिर्की आज हजारीबाग में पिछले 29 जून से आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने राज्य के कम वर्षा क्षेत्र के लिए रिलीफ फंड जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की।
2: वर्ष एल नीनो का असर पड़ने वाला है, सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचरा कर कोई बंदी करे ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए। आज मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किया, आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रूपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
0: बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मौसम, पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में जहां हर्ष है वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची मौसम केंद्र ने 10 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डोरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डोरंट कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यह बंद शहर में बढ़ते अपराध, ब्राउन सुगर के बढ़ते कारोबार और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में बुलाया गया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रंगदारी और नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।
2: इस शहर में सट्टा चल रहा, मटका चल रहा, जुआ चल रहा है, चापर चल रहा है और हत्या चल रही है। एक हिमांशु की हत्या होती है, कई हिमांशु की हत्या हो जाएगी। चैन छिनता ही तो आम हो गया और दोनों हाथ भी काट दे रहे हो। बिरसा नगर की घटना हुई है, हम सभी लोग जानते हैं कि बिना पुलिस के साठ गांठ में इतना बड़ा क्राइम को कोई मर्द नहीं है इस शहर में कि उसे अमली जामा पहना दे। एक खाकी वर्दी से पिछले दिनों के पीढ़ियां डरा करती थी, आज वही खाकी वर्दी के पीसीआर बैंथ निकाल

0: उसे चाकू मारा जाता है और पीसीआर वैन में बैठे हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी हाथ में राइफल लेकर के शोभा बढ़ा रहे थे। अब सोची लानत है, एक माँ की कोख सुना हो गया, हम आने वाले पीढ़ियों में और हिमांशु की मौत ना हो जाए, ब्राउन शुगर का कारोबार बढ़ ना जाए, जब तक आप रावण के नाभि का इलाज नहीं करोगे सर काटते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला इस शहर में नहीं है।
1: जमशेदपुर प्रधान डाकघर में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्पीड पोस्ट सेल बुकिंग कियोस्क की शुरुआत की गई। इस नई सुविधा से अब लोगों को स्पीड पोस्ट बुक कराने के लिए लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक स्वयं पार्सल का वजन कर, पता दर्ज कर और UPI QR कोड या कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर कुछ ही मिनटों में स्पीड पोस्ट बुक कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि यह सुविधा डाक सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी।
2: सेल बुकिंग कियोस्क मशीन हम लोग नया जमशेदपुर प्रधान डाकघर में इंस्टॉल किए हैं। इस मशीन का खास बात यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक कस्टमर इसमें आ करके और स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफी कम समय लगता है, 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में बुकिंग का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है, एक अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं।
1: जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर समितियां रथ को अंतिम रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों में जुटी है। प्रशासन की ओर से भी रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 होने को हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं छवि। चारों ओर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से फुहारे गिर रहे हैं, और इस मौसम में बारिश का एक गीत होना चाहिए, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी का ये गीत, मीत ब्रोस मोनाली ठाकुर की आवाजों में। कुमार के गीत हैं और संगीत है मीत ब्रोस का। इस गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। सादुल शहल राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। रेलवे रोड गजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बादशाहो। तुलसी कुमार की आवाज है, मनोज मुत्तशिर की बोल है और संगीत है तनिष्क बाजपे का। इस गीत को सुनना चाहते हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, बहु रुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, मेरा नाज, सुमेरा नाज, अभिया नाज, साजिया शाहिना, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, कोकिलवाला और आई, जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजात जहानाज, कांति निकेतन, राज

भटकर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, अन्यदी मली, जुनेद अब्बासी, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बादशाहों का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता। अलका याग्निक की आवाज है। इस गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतरेगी से भागवत वर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी। लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू। चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। मुकेश कासलेकर, विमल दिनकर, विमल विशाखा कासलेकर, ये हैं अमरावती महाराष्ट्र से। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है

हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मलुट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया आलमोल, धर्मपाल, महावीर संधु, रमेश मिगलानी। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेहराज जहां, ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं का ये नगमा।

0: से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बोले नवा नुकान परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलोरा एक गांव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हुए ही नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: विपुल बुरंग सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना कना ऐसे दुकुरे में ना आया या पाम में रियल तपाम में रियल वाह बेटा मिलता
6: अन्य में तुम दो मुंबई कोड़ा पटन में तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन में तुम कितने ही कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमो दूर रूम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
1: डायल कीजिए 8700014242.
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
3: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में. आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ. अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान. विशाल ददलानी, नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजें हैं. मयूर पुरी के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का. इस गीत को सुनना चाहते हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासेरे. छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश. सदाबहार यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र.

दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आप भी पसंद छवि के साथ। कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है निखिल विनय का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंदारे, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजे, राजदीप राजेश और राशि राजेश। ग्राम पंचोनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या चंचोलिया। दंतरेगी से भागवत वर्मा। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म हम हैं तुम्हारे सनम का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपके पसंद भी यही संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। आप हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म का नाम है लव यात्री। आतिफ असलम की आवाज है, शब्बीर अहमद के बोल हैं और संगीत है तनिष्क बख्शी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ बाटापारा दंद्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। चलिए इन सबके पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म लव यात्री का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है मेजर साहब। उदित नारायण की आवाज़ है, आनंद राज आनंद के बोल हैं और संगीत भी है आनंद राज आनंद का। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोचाई बिद्री से केपी सोए, दुर्गामती सोए, सरिता, रेशमी कुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से वासी सरदार, कमल सिंह सरदार, वीरू सरदार और अंशु, ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्ष मनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव सोरेन और एनएस महली, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोद्रा मुश्ताफा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग ककुला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मेजर साहब का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबाजा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंथा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम रे। मिथुन और अरिजीत सिंह अनिरुद्ध भोला की आवाजें हैं, मिथुन के बोल हैं, संगीत भी मिथुन का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो और दीन बंधु महतो। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबिहा। खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और भाई एस देहुरी। चलिए, इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम रे का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गरिमा वहल और सिद्धार्थ सिंह के बोल हैं और संगीत है विक्की प्रसाद का। इस गीत को सुनना चाहते हैं राधा कृष्णा गोप, अभिषेक गोप, सुनीता गोप, आशीष गोप, उमा गोप, विक्की गोप, गीता गोप, शुभम गोप, प्रीता गोप, विनोद गोप, सरस्वती गोप, राजू गोप, आराध्या गोप, सुमित गोप, अमित गोप, अंकित गोप, राजन गोप, राजू गोप, मिहिर माहिर गोप। ये हैं सरायकेला गांव कीता से, कुचाई ग्राम इचाहातू से गोलाराम लोआदा, लुद्रे सोमनाथ पूर्णिमा लालमुनि विंजना लोआदा परिवार, ग्राम लोसो देगी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद जीतू साईमान पर महतो परिवार, मेहरनगर उमेरखड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर राहे, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकाश ग्वानकर, श्रीमती वैशाली शैलेश ग्वानकर, श्वेता स्मित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर उपरी, ये हैं बहादुरा नागपुर से, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, लाडला टुक टुक ग्वानकर। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी कंथा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है जिद्दी। हरिहरन और चित्रा की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है दिलीप सेन और समीर सेठ का। इस गीत को सुनना चाहते हैं सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धिपुर सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी, बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। आमना टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतेन बीरक और मीका बीरक। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जीती का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत हम पेश कर रहे हैं इनकी फरमाइश पर। सेंटोला चाईबासा से भोला राम मथुर, बेबी देवी नताशा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार, ये हैं छोटा निमडी चाईबासा से। गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती मासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। बड़ा बम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवन प्रधान। गांव गिल्ला लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज और करनाल से जग्गी दुआ। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। पलक मुच्छल और साथियों की आवाजें हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत है और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं स्वदेश फिल्म का गीत ए आर रहमान की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, मौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु, तनु भाई, नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया और नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। चलिए आपको सुनवाते हैं स्वदेश फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान, और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत

0: रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचना

0: बाधाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया।
1: प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
7: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
6: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
8: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global south stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence, and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Chandipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
6: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President

0: economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi over 6,000 hectares of. Three persons killed and six go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
1: खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर। बात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीके कार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
3: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल

0: उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर को वक्फ किया।
0: गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजिला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: ये रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं। छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की ताकि रियासत में विकसित भारत जीरा

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
1: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
2: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एबीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और इसमें दो चीजें और हैं। तो एक तो सुविधा बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
2: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें ओपी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब यह है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है। और दूसरा ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मेरे पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराया, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
2: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था, इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे, मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये, और कुल मिलाकर ये मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
2: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णतः उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सके।
2: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा, आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था
1: जी।
2: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड

0: इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूं। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहां कहां डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0 ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन के बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, और डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने मतलब 2 दिन खर्च करके गया हूँ अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलो अप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी, तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉ.

ट्रेन के अरोड़ा कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आप सुन रहे थे हमारे राज्य केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम महफिल बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

श्रोताओं, सुर आपको हम सुनवाने जा रहे हैं सुरों के रंग कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको हम सुनवाते हैं फिल्म जवानी का ये गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है जुर्म। कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अब हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुद्दापने के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं जोश फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।